0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। और सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की पैर भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और रेडियो गुंजन के साथ जुड़ चुके होंगे। तो श्रोताओं, रोज़ाना की तरह आज भी हम करेंगे कार्यक्रम का आगाज़ एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। अच्छी सोच, अच्छे कर्म और ईश्वर का नाम, यही सफल जीवन का आधार है। बिल्कुल श्रोताओं, बहुत बड़ा विचार है और इस पर विचार हमें करना भी चाहिए। और इस विचार के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है। और आप सभी को बता दें, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप रोज़ाना सुनते हैं इसी समय, यानी कि प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और ये 2 घंटे का सफ़र हम बिताते हैं आपके साथ और आप बिताते हैं हमारे साथ, बातचीत के ज़रिए, मनोरंजन के ज़रिए। और मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत रोज़ाना हम लेकर आते हैं। साथ ही श्रोताओं, जानकारियों का पिटारा भी हम लेकर आते हैं, जिसमें से बहुत कुछ जानकारियां जो आपके काम की होती हैं हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है बातों से और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। और जो श्रोता अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा दिल भी तभी बहलता है जब आप कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। खुदगर्ज फिल्म का गीत श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसे आज लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा आपके समक्ष। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमने आगाज़ कर लिया है इस प्यारे से गीत के साथ, और आज के सफ़र में ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत आपको ज़रूर सुनवाए जाएंगे, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, रोज़ाना की तरह ही हम लोग, जैसे कि आपको मौसम की जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहते हैं, तो बिल्कुल चलते हैं मौसम की जानकारी की और आँखों देखा हाल या जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं अगर बताऊँ तो मौसम जो है वो हल्का सा ठंडा भी है, हल्की सी अभी धूप जो है वो खिली भी है, लेकिन मौसम जो है वो बरसात जो है वो लगभग जो है वो आ चुकी है और बारिश जो है वो रात में हुई है। तो श्रोताओं, धर्मशाला की ही बात करेंगे। धर्मशाला का आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, और हवा में नमी की बात करें तो 93% जो है वो नमी बनी हुई है। तो श्रोताओं, मौसम की इस जानकारी के साथ साथ मौसम विभाग क्या कहता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत, आशिक बनाया आपने। इस फिल्म का गीत हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे हैं। तो हमीरपुर के साथ जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि वहाँ के हमारे जो श्रोता हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ज़रूर कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और इसमें हम आपके साथ करते हैं बातचीत किसी खास विषय पर। और आज भी बात करेंगे आज के दिन के उपलक्ष्य पर कि आज कौन सा दिन है जो हम मना रहे हैं, और भी बातें आपके साथ करेंगे श्रोताओं। लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको शिमला ले चलने का, यानी कि शिमला से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासित परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय उद्घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थयात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देश भर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सुन्नी, लुहरी और धौलासित परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों से राज्य का उचित हिस्सा हासिल करने और जनहित में इनके बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को NHPC द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट की डुग्गर जल विद्युत परियोजनाओं के नियमों और शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि NHPC ने परियोजना में बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में राज्य सरकार संशोधित परियोजना के अनुरूप हिमाचल को उचित लाभ सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े गतिरोध को समाप्त कर दिया है और अब इस परियोजना में प्रदेश को कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यवहारिक रणनीतियों का आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। हमीरपुर जिला में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। DRDA द्वारा इस संबंध में आरंभ किया गया पंजीकरण अभियान पूरा हो गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: जिले भर के 6 ब्लॉकों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब विभिन्न ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी उत्पाद बेच सकेंगी। महिलाओं की सुविधा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से शुरू किया गया पंजीकरण अभियान पूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह लंबे समय से विभिन्न प्रकार के घरेलू हस्तशिल्प खाद एवं पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने के बावजूद बाजार तक पहुंच सीमित रहने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। अधिकांश समूह स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों या आसपास के बाजारों तक ही सीमित रहते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए DRDA ने समूहों को डिजिटल क्षेत्र प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना तैयार की। अभियान के दौरान समूहों का पंजीकरण करवाने के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया, उत्पादों की तस्वीरें, ग्राहकों से संपर्क, ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति में 11 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा केलांग में आईसीएमआर सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का शिलान्यास करेंगे। ये केंद्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर शोध और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान के शुरू होने से लाहौल स्पीति सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में भी ये केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रवि ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
2: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
0: आकांक्षी जिला चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणित पीएचसी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पीएचसी चनेड़ प्रदेश का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 6 बार कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: राष्ट्रीय मूल्यांकन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो गुणवत्ता मानकों, रोगी संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सेवाओं, प्रबंधन व्यवस्था तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। NQAS भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन, सेवा प्रदायगी, रोग अधिकार, मानव संसाधन तथा संरचना, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्वास्थ्य परिणामों सहित विभिन्न मानकों पर किया जाता है। इस तरह की उपलब्धियों से अवश्य ही जिला चंबा जल्द आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर आ पाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा से 49 सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जबकि बिजली के 42 ट्रांसफार्मर और 27 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को भी कहा गया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, SGVNL ने वापस ली जाएंगी 3 जल विद्युत परियोजनाएं संबंधी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की एक सुर्खी है, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जून में नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, ग्रामीण क्षेत्रों को मिले 162 डॉक्टर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सरकार ने जारी किए आदेश, जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति। दैनिक जागरण हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, कानूनी हक मांगने पर कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर की एक खबर है, करुणामूलक नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, पांगी के घिसल धार में बादल फटने से तबाही, 6 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासित परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देश भर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़के अवरुद्ध। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आपको बता दें 91.2 मेगा हर्ट्स पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समाचारों के बाद बातचीत और गीतों का सिलसिला फिर से हम शुरू करेंगे। गीत से पहले हमने बात की थी थोड़ी सी मौसम को लेकर और मौसम पर थोड़ी सी और बात हम कार्यक्रम में करेंगे। श्रोताओं, हिमाचल प्रदेश में मानसून ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 3 से 6 जुलाई तक कई जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि 7 और 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही श्रोताओं, मौसम विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी नालों और खड्डों के किनारे जाने से बचने तथा खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने की अपील भी की है। श्रोताओं, मौसम जब भी बदलता है और बरसात का मौसम आता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो सुनने में मिल जाती हैं, देखने को मिल जाती हैं, और ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो जानकारी मौसम की हमने आपके साथ की साझी और इसके बाद अब कार्यक्रम में हम फिर से आगे बढ़ेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। केकी की आवाज़ में सुनेंगे गैंगस्टर फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडी दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, समय का पता भी नहीं चलता कि कब निकल जाता है, बिल्कुल हाथों में जिस तरह से रेत फिसलती है उसी तरह से समय भी फिसलता चला जाता है। देखिए, जुलाई का मंथ जो है वो शुरू हो गया है और आज 3 जुलाई

अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान गेटिसबर्ग का युद्ध समाप्त हुआ। साथ ही 1928 में आज ही के दिन लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। 1962 में आज ही के दिन 132 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली। तो ऐसा ही कुछ रहा 3 जुलाई का इतिहास श्रोताओं, और इन बातों के साथ अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और खास आज हम बात आपके साथ ये भी करने वाले हैं कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी मनाया जाता है, जिस पर बातचीत ज़रूर होगी। और उस बातचीत के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं एक और प्यारा सा गीत हकीकत फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे बातचीत। श्रोताओं, हमारे आस पड़ोस में या कहीं पर भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है या कोई भी बात हमें सुनने को मिलती है तो हम कहीं ना कहीं सतर्क हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई, ये घटना कैसे हुई होगी, और ऐसी घटना किसी और के साथ हुई है हमारे साथ भी हो सकती है, तो उसके लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझ रहे हैं, इसलिए पहुंचा रहे हैं श्रोताओं। यहाँ धर्मशाला के नगरोटा जगह में एक ठानपुरी गांव है, वहाँ पर करीब सुबह के 3 बजे जब सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस समय परसों की सुबह 3 बजे के करीब घर पर चोरी हो गई। और चोरी भी क्या, किस तरह से इंसान अपने पैसे इकट्ठे करता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत जगह जमा पूंजी इकट्ठी करके रखी होती है। उन्होंने अपनी एक अलमारी में 3 लाख रुपए रखे थे जो कि उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए थे, और घर के जितने भी सदस्य हैं उनका जो गोल्ड था वो भी उसी अलमीरा में पड़ा हुआ था। और जब सब गहरी नींद में सोए हुए थे उस समय चोरों ने आकर उनके घर का जो दरवाज़ा है मेन डोर उसे किसी तरह से तोड़कर खोल दिया, और जिस रूम में वो लोग सो रहे थे उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया। साथ ही के रूम में जहाँ अलमीरा रखी हुई थी वहाँ कोई भी नहीं सो रहा था, इसलिए चोरों को भी कोई परेशानी नहीं हुई चोरी करने में और वो सफल रहे चोरी करने में। और श्रोताओं, इस चीज़ का पता तब चला जब उस साथ वाले रूम में सोए हुए व्यक्ति को बाहर वॉशरूम उठ के जाना था, तो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था, और जब उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को आस पड़ोस में फ़ोन करके बुलाया तब तक चोर चोरी कर जा चुके थे। तो श्रोताओं, ये खबर आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक के होने के बाद भी अपना जमा पूंजी या गोल्ड अपने घर पर ही रखते हैं, चाहे वो अलमारी हो चाहे वो बेड बॉक्स हो, कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा सामान सुरक्षित है वहाँ हम रख देते हैं, लेकिन कब अनहोनी हो जाए कोई पता नहीं होता। और साथ ही श्रोताओं, देखिए ये सब बातें जो होती हैं हमारे घर की सीक्रेट बातें होती हैं जो शायद कहीं किसी के कान पर पड़ भी जाती हैं और उसका फ़ायदा लोग उठा लेते हैं, तो ऐसे में हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आजकल तो बैंक की सुविधा हमारे पास है तो अपना जो जमा पूंजी है, पैसा है या फिर गहने हैं उन्हें वहीं पर सुरक्षित रखना बिल्कुल ठीक रहता है, इसलिए हमें ऐसी घटनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बहुत मुश्किल से हम लोग कमा पाते हैं, और ये जमा पूंजी जब एक मिनट में कहीं चोरी हो जाती है तो फिर उसका तो बहुत बुरा लगता है। तो श्रोताओं, अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए और अपना गहना अपने पैसे बैंक में ही रखिए। अब इस जानकारी के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, और आप तक पहुंचाएंगे लगान फिल्म का एक प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ें रहेंगी अलका याग्निक और उदित नारायण की।

बिल्कुल श्रोताओं, ये धरती भी अपनी है, ये अंबर भी हमारा अपना है। इसलिए जो चीज़ हमारी अपनी होती है उसका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज बनता है। श्रोताओं, अपनी हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं तो धरती का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, आसमान का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। और रोज़ाना कार्यक्रम में हम इस विषय पर आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करते रहते हैं। और आज भी हम ख़ास एक बात करने वाले हैं। आज एक ख़ास दिन दिवस जो है वो मना रहे हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। बिल्कुल, हर साल 3 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रोताओं, सिंगल उपयोग यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को कपड़े या जूट के थैलों जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, ये पर्यावरण संरक्षण पर अगर हम बात करें तो एक प्लास्टिक बैग को विघटित होने में लगभग 100 से 500 वर्ष का समय लगता है। इससे भूमि और जल प्रदूषण दोनों होते हैं। साथ ही जब प्लास्टिक कचरा समुन्द्र में पहुंच जाता है तो ये जलीय जीवों के लिए जानलेवा भी साबित होता है। इस दिन की शुरुआत की बात करें श्रोताओं, तो इस वैश्विक पहल की शुरुआत 2009 में जीरो वेस्ट यूरोप द्वारा की गई थी। तो श्रोताओं, आज इस विषय पर हम आपके साथ करेंगे बातचीत। और जैसा कि हमने कहा, ये धरती हमारी है, ये आकाश हमारा है, ये पर्यावरण हमारा है, इसका ख्याल हमें रखना है। और आज ज़रूर हम इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आज हम मना रहे हैं। कोई भी दिन मनाने पर हमें इस पर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को गीत के साथ। बंटी और बबली फिल्म का गीत अब आप सभी सुनेंगे, अलीशा चेन्नई और शंकर की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

अंतराल के बाद श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ एक खबरें, कुछ एक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। नीट यूजी रिजल्ट 20 जुलाई तक आने की संभावना है श्रोताओं, और देश के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के द्वारा इस चीज़ का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है, और अब उनका इंतज़ार ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो उनका रिज़ल्ट जो है 20 जुलाई तक आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी इसके इंतज़ार में बैठे होंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। साथ ही श्रोताओं, एमए फिज़िकल एजुकेशन की काउंसलिंग 9 को होने वाली है और बीएड की परीक्षाएँ जो हैं वो 14 से शुरू होंगी। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें जो कि आप तक पहुंचाई हमने, और आज कार्यक्रम में हम खास बात कर रहे हैं आज के दिन की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की। बिल्कुल श्रोताओं, ये जो प्लास्टिक है ये आपको पता है 100 से 500 वर्ष लगते हैं इसे बिल्कुल विघटित होने में, ख़त्म होने में, और इसका प्रदूषण जो है एक बार फैल जाए तो उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। ख़ास करके जैसे कि हमने पहले भी बात की कि समुद्री और वन्य जीवन की जो रक्षा है हमें करनी चाहिए। जब प्लास्टिक जो है कचरा समुंदर में पहुंचता है तो जलीय जो जीव हैं उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो श्रोताओं, हम कैसे योगदान दे सकते हैं इस बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे। जब भी हम ख़रीदारी करने जाते हैं हमेशा अपने साथ कपड़े का थैला साथ रखना चाहिए। बिल्कुल श्रोताओं, हमने बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को देखा है, वो बहुत समझदार होते हैं और सच में उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कहीं भी जब हम जाते हैं सामान लेने, सब्जी लेने, कुछ भी लेने, तो उनके हाथ में कपड़े का एक थैला ज़रूर रहता है। और अगर हम कहीं जाएं तो हमारे हाथ में सिर्फ एक पर्स रहता है, और जब हम कुछ ख़रीदते हैं तो हमें या तो प्लास्टिक के बैग में वो चीज़ लेनी पड़ती है या फिर अखबार के बने लिफाफों में, जो कि फट जाते हैं और हमारा जो सामान है वो बिखर जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है कि कपड़े के बैग हम साथ में लेकर जाएं। श्रोताओं, उसके लिए हम घर में पड़ा जो अपना वेस्ट कपड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे थैले बना सकते हैं और पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों की बजाय श्रोताओं, कागज़ के लिफाफों का या बायोडिग्रेडेबल विकल्पों का अपनाना बहुत सही रहता है। अपने दैनिक जीवन में सिंगल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हमें करना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, प्लास्टिक हम ये यूँ तो नहीं कह सकते कि प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो हम लोग बच्चों के लिए खाने की चीज़ें खरीदते हैं उनके जो पैकेट्स हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। हम अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि प्लास्टिक का जो भी सामान है, वेस्ट है, उसे यहाँ वहाँ ना फेंक कर, नदी नालों में ना फेंक कर अपने कूड़ेदान में ही डालें ताकि वो सही जगह पहुँच सके। और जब कूड़ा हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी में, ज़मीन में या पानी में, यानी कि नदी नालों में चला जाता है, जिससे कि बहुत सारी दिक्कत हमें देखने में मिलती है। तो श्रोताओं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल अगर हम रखेंगे तो ज़रूर हम लोग अपनी प्रकृति को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो श्रोताओं, इन बातों को अब यहीं पर देते हैं विराम, क्योंकि हमें आपको सुनवाना है कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत। तो चलते हैं, सुनते हैं बचना ए हसीनों, इस फिल्म का गीत के और शिल्पा राव की आवाज़ों में।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला चला हुआ है और हमें उम्मीद है कि आप सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम के साथ जुड़िए, क्योंकि कार्यक्रम के साथ जुड़ने से एक तो हमारा मनोरंजन होता है और हमें जानकारियाँ भी मिल जाती हैं जिसके लिए हमें कहीं बैठना नहीं पड़ता, चलते चलते भी हम इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, घर के अपने काम करते करते भी हम कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि आप कोई भी काम कर लीजिए लेकिन रेडियो गुंजन धर्मशाला जो है वो आपके साथ हमेशा तैयार रहता है आपको मनोरंजन करवाने के लिए, आप तक जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं 3 जुलाई को जो पूरी दुनिया एक दिन बना रही है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, तो उस पर आज हम बात कर रहे हैं श्रोताओं। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी धरती के भविष्य पर बड़ा असर डालती हैं। श्रोताओं थोड़ा सा सोचिए, बाज़ार से सामान लाने के लिए लिया गया एक प्लास्टिक का बैग हम कुछ ही मिनटों में फेंक देते हैं, लेकिन वही प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में नहीं गलता, ये नदियों जंगलों समुद्रों तक पहुंचकर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कई बार गाय कुत्ते और अन्य पशु इसे खाने की भूल कर बैठते हैं जिससे उनकी जान चली जाती है। कई बार हमारे घर में कुछ बच जाता है, सब्जियों के छिलके बच जाते हैं, आटा बच जाता है, तो हम उन थैलियों में डालकर उसे वैसे ही फेंक देते हैं, और जानवर जो कि भूखे होते हैं और उन्हें खाने की कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो खा लेते हैं, तो वो उस खाने की चीज़ को खाने के उसमें वो प्लास्टिक को भी खा लेते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों प्रकृति ने हमें स्वच्छ हवा, मीठा पानी और हरियाली का अनमोल उपहार दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रकृति का साथ दें। जब भी बाज़ार जाएं अपने साथ कपड़े का जूट का थैला लेकर ज़रूर जाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग से जितना हो सके उतना हमें बचना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आज लिया गया एक छोटा सा संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बना सकता है। बिल्कुल श्रोताओं, और इस पर विचार ज़रूर कीजिए, सोचिए और प्रकृति का ख्याल रखिए। और हम आपका ख्याल रखते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका मनोरंजन भी हम समय समय पर करवाते रहते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं गंगा तेरे देश में फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ें दी हैं इस गीत को मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पोडवाल ने।
1: और कुछ मांगने की ज़रूरत क्या है?
2: आज मैं भगवान के घर क्यों आई हूँ?
1: जानता हूँ, बताओ ना। आज
2: मैं

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, प्रकृति की और प्लास्टिक मुक्त अपने प्रदेश को, देश को बनाने की। बिल्कुल श्रोताओं, और देखिए बातों बातों में बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें याद आती हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपके साथ वो बातें कर सकते हैं। श्रोताओं, रोज़ाना हम देखते हैं कि सुबह बच्चों के लिए हम लोग स्कूल के लिए टिफ़िन पैक करते हैं, रोटी पैक करते हैं, परांठा पैक करते हैं, और बहुत सारे लोग उसके लिए एल्युमिनियम फॉयल पेपर या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुविधा तो श्रोताओं देता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल के बाद ये पर्यावरण पर बोझ भी बढ़ाता है। एल्युमिनियम फॉयल की बात करें श्रोताओं, तो कभी उसे जला कर देखिए, वो जलता ही नहीं है, और अगर हम उसे इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक देते हैं तो वो कूड़े में चला जाता है, पानी में चला जाता है, और प्लास्टिक की तरह वो भी गलता नहीं है। तो श्रोताओं, जो गलता नहीं है वो कहीं ना कहीं अपना असर हमारे खाने पर भी छोड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी छोड़ता है। अगर इसकी जगह हम साफ सूती कपड़े का उपयोग किया करें तो वो हमारी रोटियों को भी ताज़ा रखने में मदद करता है, और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बार बार धोकर दोबारा हम उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैसे भी इससे बचते हैं, स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहता है, पर्यावरण भी हमारा ठीक रहता है, और हम भी खुश रहते हैं। तो श्रोताओं, इससे एक तो कचरा कम होता है और प्रकृति पर भी कम दबाव पड़ता है। हमारी श्रोताओं पुरानी परंपरा भी हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके ऐसी चीज़ें अपनाएं जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं श्रोताओं। और फिर वही बात कि हमारे बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही बात कहा करते थे और हमें सिखाया करते थे, लेकिन हम चलते चलते यहाँ पहुँच गए जहाँ हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं। पर अब समय आ गया है कि फिर से हमें अपने बुज़ुर्गों की बातें याद करनी पड़ेंगी और उनकी बातों पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आंवले का खाया हुआ और बड़ों का बताया हुआ उसका पता बाद में ही चलता है। तो अगर हम समय रहते इन बातों पर अगर अमल कर लेंगे तो अपना स्वास्थ्य भी हम ठीक रख पाएंगे और प्रकृति का साथ भी हम दे पाएंगे। तो श्रोताओं, अब प्रकृति की बात हमने कर ली है और अपने मनोरंजन की बात अब हम करेंगे, यानी कि फिर से हम आपको लिए चलेंगे एक और प्यारे से गीत की ओर। जीत हमारी इस फिल्म का गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोता कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ी सी बात हम करेंगे मॉनसून को लेकर, और मॉनसून जो है वो अब लगभग आ ही गया है। मॉनसून अपने साथ हरियाली और ठंडक लेकर आता है, लेकिन यदि हम पहले से तैयारी ना करें तो यही बारिश कई परेशानियाँ भी खड़ी कर सकती है। बिल्कुल श्रोताओं, और बारिश शुरू होने से पहले हमें हमारे घर की छत, नालियाँ, पानी की निकासी की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी चाहिए ताकि पानी जमा ना हो। इसके साथ बिजली के खुले तारों और ख़राब स्विच की मरम्मत भी हमें करवा लेनी चाहिए। ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, टॉर्च है, छाता है और रेनकोट जैसी चीज़ें हमें पहले से रख लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हम लोग, बरसात शुरू हो जाती है और कहीं आने जाने की भी मुश्किल हो जाती है, और हम तब सोचते हैं कि काश हमने छाता ले लिया होता, रेनकोट ले लिया होता, तो हमें इस तरह से भीगना ना पड़ता। इसलिए पहले से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप किसान हैं श्रोताओं, तो खेतों की जो नालियां हैं वो साफ़ रखनी चाहिए। बीज और खाद को भी सुरक्षित स्थान पर हमें रखना चाहिए, और पशुओं के लिए सूखा चारा व सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था भी हमें कर लेनी चाहिए। बारिश के दौरान श्रोताओं, मच्छरों का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर घर के आसपास आपके कोई ऐसा सामान, कचरा, कबाड़ पड़ा है जिसमें पानी इकट्ठा है, तो उसे आप साफ़ कर लीजिए। और श्रोताओं, थोड़ी सी तैयारी हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है, इसलिए मॉनसून की स्वागत पूरी तैयारी के साथ, सावधानी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ हमें करना है। और अब हमें आगे बढ़ना है मनोरंजन की ओर, और आपको सुनवाना है एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम में। तो चलते हैं, सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत सोनू निगम और जावेद अली की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि हमारी सोच जो है वो अपनी अपनी होती है। कुछ लोग जो हैं अपने काम को उसी समय ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे। पर जब हम कल पर काम को छोड़ते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए हमें समय की कदर करनी चाहिए और जो काम जब सोचा है उसे उसी पल कर लेना चाहिए। एक छोटी सी कहानी श्रोताओं याद आई है, वो आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। एक गांव में दो किसान रहते थे, दोनों के खेत पास पास थे। एक किसान जो था वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेत की देखभाल करता, पौधों को पानी देता, समय पर मेहनत करता। दूसरा किसान जो था वो अक्सर कहता, आज समय नहीं मिला, कल देखते हैं, कल कर लूँगा, कल मेहनत करूँगा और अपनी फसल को देख कर आऊँगा। दिन ऐसे ही बीतते चले गए और पहले किसान की फसल जो है वो हरी भरी लहलहाने लगी, जबकि दूसरे किसान के खेत में खरपतवार जो है वो उगाए। एक दिन एक दूसरे किसान को पूछा कि तुम्हारी फसल क्यों नहीं बढ़ रही है, इतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं कल जाऊंगा। लेकिन उसने उससे पूछा कि तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, कैसे हुई है। तो पहला किसान मुस्कुराकर कहता है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सा समय जो है वो दिया है, थोड़ा थोड़ा जाकर उसकी सेवा की है और इसलिए मेरी फसल जो है वो अच्छी हो गई है। तो श्रोताओं, ये कहानी छोटी सी है लेकिन सीख हमें यही देती है कि सफलता जो है वो हमें एक दिन में ही नहीं मिलती, रोज़ रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमें बड़े सपनों तक पहुंचाती हैं। तो फिर श्रोताओं, आज की सुबह भी एक नए संकल्प के साथ हमें शुरू

करनी चाहिए और हर दिन एक छोटा सा कदम, अच्छा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। तो आप भी जो सोचा है उसे आज कर लीजिएगा, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और अब आपको सुनवाते हैं ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे श्रोता हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। तो श्रोता हूँ, अब हमारा समय जो है वो कार्यक्रम का संपन्न होने ही वाला है, तो आपको सुनवाएंगे चलते चलते एक दो और गीत। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शुद्ध कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय अब समाप्ति की ओर है और इस गीत के साथ ही अब मुझे यानी कि अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की इजाज़त। आप सभी अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं लेती हूँ आपसे अब विदा। जय हिंद।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: फरार
1: थोड़ा थोड़ा
0: होठों पे इनकार थोड़ा थोड़ा।
2: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: विटामिन्स और मिनरल्स से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। और एक बार फिर से एक खास जानकारी के साथ, खास कार्यक्रम के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सुनते हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रूमा गुलेरिया जी से, जो कि एक अधिवक्ता हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रूमा जी का इस प्यारी सी बातचीत में, प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं रूमा जी आप?
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ रुचिका, और उम्मीद करती हूँ आप और हमारे सुनने वाले सभी दोस्त भी बिल्कुल ठीक होंगे
0: जी।
1: और रुचिका, जैसे आप हाल चाल पूछ रही हैं ना, तो आजकल ना बहुत सारी चीजें जो हैं हमें परेशान करती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो स्वास्थ्य है
0: जी,
1: उसी को लेकर हम सभी लोग, मुझे लगता है कि जनता में इतनी जागरूकता है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हैं और स्वस्थ रहने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं
0: जी।
1: मैंने आजकल देखा है लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो वो जिम जा रहे हैं। और मैंने एक चीज और भी देखी, पहले क्या होता था कि हम लापरवाही कर जाते थे, लेकिन अभी क्या है, हम लोग रूटीन चेकअप भी करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और देखो स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो परेशान नहीं कर पाती है। लेकिन सब सुविधाएं होने के बावजूद अगर हम बीमार पड़ जाते हैं बार बार, तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हमारे परिवार के सारे सदस्य भी इस चीज़ से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इंसानी शरीर है, बीमार भी होते हैं, और इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है।
0: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। क्योंकि अक्सर बीमारियों की बात करें ना रूमा जी,
1: जी
0: तो वो तभी हम फेस करते हैं जब हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल, और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। और इसी कड़ी में हम अगर देखें तो हमारी जो आज की जनरेशन है वो काफी कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ी लापरवाह भी है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं और कुछ भी जो भी अनशन आता है वो खा लेते हैं। घरेलू खाना हमें पसंद नहीं आता है। जोमैटो स्विगी जैसे ऐप आजकल इतने चलन में है ना रुचिका, कि जब हमारा मन नहीं होता है कुछ खाना बनाने का, तो हम फटाफट से कॉल करके बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं, और ये हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाता है।
0: जी बिल्कुल रूमा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आज के समय में ये जोमैटो, ये स्विगी जो है, एक तरह से हमारे आलसपन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब हम कहीं से आए होते हैं या थके हारे होते, चलो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं बना पाते, वो एक अलग चीज है।
1: कभी कभार तो रुचिका मेरे को लगता है कि बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, खा लेना चाहिए, लेकिन जो हमने रूटीन बना ली
0: डिपेंडेंसी एक तरह
1: बिल्कुल, और फास्ट फूड की ओर हम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है। और आज की जो यंग पीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन करके आते हैं, काफी कसरत करके आते हैं, और घर में आके फटाफट से जो है वो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, और कई प्रकार के फास्ट फूड हैं, बाहर का ऑयली खाना खा रहे हैं, तो ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ही है।
0: बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और रूमा जी आपकी ना ये इशारे जो है, मैं समझना चाह रही हूँ कि किस और जा रहे हैं, तो हमारे दोस्तों को बताएं कि आज आप ऐसी कौन सी बात, मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है तो आप कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत जो है हमारे दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, बात तो स्वास्थ्य को लेकर है, लेकिन मैं बात थोड़ी अलग हटके करना चाहती हूँ।
0: जी
1: देखो रुचिका, आजकल के समय में हम, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, जो बीमार नहीं पड़ता हो और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी भी है, और देखो स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा
0: जी।
1: लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूँ कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज बन के या रोगी बन के, जब भी हम जाते हैं, तो क्या हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है ना, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहे हैं, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि डॉक्टर हमें अच्छे से देखे, हमारा इलाज करे, हमारी बीमारी से हमें निजात मिले।
0: जी
1: लेकिन यहाँ पे अब अधिकारों की बात कहाँ से आ गई, है ना।

0: आपके मन में सवाल उठ रहा है और आपकी जो प्रश्नवाचक आंखें है ना, तो मुझे लगता है कि हम इसी विषय पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक मरीज के भी अधिकार होते हैं। जब हम बीमार होके कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं से भी किसी प्रकार का उपचार लेते हैं, तो हमारे अधिकार क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए।
1: जी जरूर। तो आपकी इस खास बातचीत की तरफ जाने से पहले मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर लेकर जाना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए,
0: बिना मनोरंजन के तो कोई भी बात हमारी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो गाना
1: बढ़ेगी
0: तो
1: नहीं।
0: जरूर सुनेंगे हम।
1: जी जी तो क्यों ना आपकी कुछ गुनगुन, क्योंकि आजकल आप गीत भी गा रहे हैं और हमारे दोस्तों तक ये बात भी हम जरूर पहुंचाएंगे, ताकि वो आपको सपोर्ट करें, आपकी जो है आगे बढ़ने में उनकी हेल्प जो है वो जरूर हो। तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत आप अपनी इस मधुर सी आवाज में गुनगुनाए।
0: रुचिका, आपने तो बहुत धर्म संकट में डाल दिया मुझे, क्योंकि
1: जी
0: अभी ऐसा कोई गीत मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक कवर सॉन्ग निकाला था, सलमागा जी का एक गाना था,
1: जी
0: बहुत ही मधुर आवाज़ है उनकी, उसी को मैंने अभी कवर सॉन्ग के तौर पे गाया है और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं आप दोस्तों की बदौलत। तो उसी की
1: जी
0: दो लाइनें मैं सुना देती
1: जी
0: हूँ।
1: मैम।

0: दोस्तों
1: जी दोस्तों, बहुत ही मीठी सी मधुर सी आवाज। देखिए कितना सुकून, कितनी शांति, कितना प्यार इस आवाज में आप सभी तक पहुंचा है ना? बिल्कुल।
0: थैंक यू।
1: तो ये आप मैम का कवर सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं। रूमा गुलेरिया नाम का पेज है, मे बी आपका है
0: बिल्कुल,
1: ना?
0: रुमा गुलेरिया @40073।
1: जी, तो
0: जी
1: बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट और साथ। और कहते हैं ना, एक वुमेन जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, तो यहीं से पता चलता है कि एक अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक गृहिणी के रूप में भी काम कर रहे हैं, और म्यूजिक फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यही होता है हम सभी महिलाओं में टैलेंट। तो इस टैलेंट की कद्र हमें तो करनी ही चाहिए, लेकिन हमारे सपोर्टर्स को भी करनी चाहिए। तो फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं इसी प्यारे से गीत को, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से सफर में, प्यारी सी बातचीत में।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ ही एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस खास बातचीत में, हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, जो कि आप सभी सुनते हैं अधिवक्ता रूमा गुलेरिया जी के साथ और अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो जानकारियां हैं, ये जो एक तरह से सावधानियां हैं हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आप सभी तक जरूर पहुंचती भी हैं और आप उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी जरूर करते होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो रूमा जी, आपने कहा कि जिस तरह से हम हॉस्पिटल्स में जाते, क्योंकि अक्सर हम तो सिर्फ जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और वापिस आ जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: कुछ अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती भी है तो हम डर के मारे या हिचकिचाहट से चुप रह जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यहाँ आपने अधिकारों की बात कर दी है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है रुचिका, जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम बीमार हैं, हमने
0: जी
1: दवाई लेनी है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर जो बोलेगा वो हम पूछ के बात करके वापस आ जाते हैं।
0: जी
1: लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि डॉक्टर से जब हम मिलते हैं तब भी हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो हमारी हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं।
0: जी तो अब आप हमारे दोस्तों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो उन बातों का ध्यान रखें और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां उन्हें अपने अधिकारों के अंदर रहकर आवाज उठाने का मौका मिले तो वो जरूर उठा सकें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है
1: जी बिल्कुल
0: तब तक हम पीछे रह जाते हैं हर एक बेनिफिट से, हर एक चीज से। तो
1: बिल्कुल।
0: जरूर हमारे दोस्तों को बताइए कि किस तरह से क्या क्या अधिकार रहते हैं।
1: देखो रुचिका, जब भी हम बीमार होते हैं, अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें स्वास्थ्य सेवा के दौरान प्राप्त होते हैं। और देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने स्वास्थ्य को विशेष मानवाधिकार का दर्जा दिया है। तो एक स्वस्थ जीवन जीना हम सभी का अधिकार है। और जब हम बीमार होके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज के रूप में, तो हमें सबसे पहला अधिकार तो ये है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। और देखो, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें एक सम्मानजनक जो है बिहेवियर जो है वो हमारे साथ होना चाहिए। हमें कई बार आए सुनने में मिलता है कि हम अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ने सही ढंग से बात नहीं की, उसने हमें बिना सुने थोड़ी सी बात सुन के हमारी जो है प्रेस्क्रिप्शन उसने दे दी है, हमें हमें समझाया नहीं गया है कि हमारी बीमारी क्या है, किस तरह से हमने दवाइयाँ खानी है। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स लिख देते हैं, और कई अक्सर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टरी पेशा एक बहुत सम्मानजनक पेशा है, और मैं
0: जी
1: मानती हूँ कि इतने मरीजों को रोज देखना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी रखना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी देखिए, अतिशयोक्ति होती है कहीं ना कहीं, तो विरोधाभास पाए जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि ओवरवर्डन के कारण या किसी भी फ्रस्ट्रेशन के कारण, डॉक्टर्स भी हैं तो इंसान ही,
0: बिल्कुल
1: तो वो मरीज के साथ मिसबिहेव हो सकता है। डॉक्टर ना करे, स्टाफ कर सकता है। कोई भी अगर इस तरह का मिसबिहेव करता है तो वो गलत है। एक सम्मान और सम्मानजनक उपचार जो है वो हमारा पहला अधिकार है। जब भी हम अस्पताल में जाएं, हमें बिना लिंग, जाति पाति, रंग भेद के हमारा जो है वो उपचार डॉक्टर को करना चाहिए, ये उसका राइट है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, इस तरह का विरोध जो है उपचार के दौरान नहीं होना चाहिए। जो भी मरीज है उसके साथ एक सम्मान अधिकार हमें मिला है। और ये अधिकार जो है, देखिए, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। तो जब भी हम अस्पताल जाएं, तो हमें जो है ये अधिकार जो है, इसी के अनुसार हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि आप गरीब तबके से आए हो, आप अमीर तबके से आए हो। देखिए, हमारे और कंट्री की हम बात करें तो वीआईपी कल्चर बहुत है।
0: जी
1: यहाँ पे अगर कोई वीआईपी मरीज पहले आ जाता है, तो एक हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के चक्कर में क्या है, एक
0: बहुत
1: सीरियस मरीज
0: से
1: कहीं पड़ा है तो उसको देखना भूल जाते हैं। तो
0: जी
1: ये सब नहीं होना चाहिए। आम मरीज को भी उसी वीआईपी मरीज की तरह ही डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए। और
0: बिल्कुल
1: ये हमारा अधिकार है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है इस तरह से, तो हम आवाज उठा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी उपचार जब डॉक्टर करता है, मुझे क्या बीमारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे बताए मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी की स्थिति क्या है, उसमें जोखिम कितना है, उसको ठीक होने में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये जानकारी डॉक्टर हमें बताए। और इसमें एक चीज और है कि कई बार बाहरी लोग भी हमारे एरिया में आते हैं या हम कहीं बाहर चले गए हैं जहाँ की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मरीज को उस भाषा में समझाने की कोशिश करे जो उसको समझ में आती है। और कई बार हमने अक्सर देखा है, हम भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर ने लिख दिया उसको, चाहे वायरल ही है, डॉक्टर हमसे पूछते हैं और उसके बाद वो जो भी अपनी दवाइयां हैं वो हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं, हम वो दवाइयां ले लेते हैं, कितने दिन तक खानी है, क्या है, डॉक्टर सारा बता देते हैं हमें। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें बीमारी क्या है। डॉक्टर गए, आपको सर दर्द है, पेट दर्द है, दवाई लिख दी, हमें पता होना चाहिए हमारी बीमारी क्या है। जो भी हमारी बीमारी है अगर हमें वो तकलीफ दे रही है उसका हमें प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। और अगर आप बड़े हैं तो आपको किसी भी बीमारी के इलाज के उपचार को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का आपको पूरा राइट है। मतलब आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप डॉक्टर को मना कर सकते हैं, डॉक्टर आपको जबरदस्ती किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तब भी हम अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना, क्योंकि अक्सर हम ये बातें शायद देखते नहीं है तो सुनते तो हैं ही कहीं ना कहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी भी बात होती है तो वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है,
1: बिल्कुल,
0: और सभी तक पहुंच आती है। एक तरह से इसका बेनिफिट भी है लेकिन एक तरह से इसका एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि जो जो हमारे नॉन होते हैं, क्योंकि स्टाफ तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होता है, तो जो नॉन जानने वाले होते हैं उन्हें सबसे पहले आगे कर दिया जाता है, भले ही लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगे रहते हैं तो उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो हर किसी का अधिकार है अपने लिए आवाज उठाना। तो वहां पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर दूर से आए होते हैं और इतनी दूर से कई बार तो टेस्ट करवाने होते हैं तो खाना भी नहीं खाया होता है उन्होंने, तो सुबह से लाइन में लगे होते हैं। लेकिन जो बाद में आ रहे होते हैं कुछ लोग जो कि जान पहचान के होते हैं, तो वो सबसे पहले अपना चेकअप करवाने की कोशिश करते हैं या करवाते हैं।
1: बिल्कुल। तो और ये भी एक देखिए एक तरह से हम बात समानता की करते हैं और यहाँ पे समानता नहीं रह जाती।
0: बिल्कुल।
1: तो ये हमारा अधिकार है। और रुचि का एक और जो मुख्य अधिकार मैं जिसकी बात करूं वो है गोपनीयता का अधिकार। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो है प्राइवेसी जो है, आपकी डिग्निटी है जो है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, जिनका नाम लेते हुए भी हम लोग शर्म महसूस करते हैं। जैसे HIV एड्स की बात करें, या घर में कि कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है, TV की बीमारी की बात करें, लोग आज भी इन बीमारियों का नाम लेते समय, बात करते समय हिचकते हैं, अपनी बीमारी किसी को नहीं बताते हैं। और कई बार जो मरीज है वो इसी वजह से कि मेरा ये सीक्रेट एक तरह से जो है वो बाहर चला जाएगा, मेरी बीमारी के बारे में सोसाइटी को पता चल जाएगा, मेरी जो सोसाइटी में मुझे अलग थलग कर दिया जाएगा, मेरे परिवार का तिरस्कार होगा, तो ऐसे में जो है मरीज जो है वो अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए डॉक्टर्स तक नहीं जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उस पूरी स्वास्थ्य टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है या किसी भी स्वास्थ्य सेवा के संबंध में वो आपसे संपर्क करता है, तो उसकी गोपनीयता, उसकी डिग्निटी को बचा के रखा जाए, उसके बारे में उसकी निजी जानकारी कहीं पे भी साझा नहीं की जाए।
0: जी बिल्कुल। दोस्तों कई बार यही जो हम एक तरह से कह रहे हैं ना कि गोपनीयता, जब कई बार हम उसे बाहर किसी के भी सामने किसी भेदभाव के नजरिए से या किसी भी तरह से अगर हम किसी को बताते हैं, तो कुछ लोग जो अपनी जान इसी वजह से गंवा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हमें पता नहीं किस नजर से देखा जाएगा, क्योंकि समाज की आज भी सोच जो है कहीं ना कहीं उस ओर चली ही जाती है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम बदलते समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं, अब जैसे रूमा जी ने अभी कहा कि HIV एड्स की हम बात करें या TV की हम बात करें, तो हम इसे जड़ से खत्म करने के पूरे पूरे प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कमी रह रही है। तो हम लोगों की वजह से
1: बिल्कुल
0: हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं और बीमारी का इलाज उस डर के कारण ही नहीं करा पाते हैं, उस बीमारी को हम डॉक्टर तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि शर्म और जो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज जब कहीं इन्वॉल्व हो जाती है तो हम घबराते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर हम हमारी भी सोच ऐसी है, जब हमारे सामने कोई HIV एड्स का पेशेंट आ जाता है तो हम सभी हिकारत भरी नजरों से उसको देखते हैं। हमारे चाहे बीमारी का कारण कोई भी रहा हो, हमारे मन में हमेशा उसकी एक नकारात्मक छवि जो है वो बन जाती है। तो अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है, उसके उपचार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा परीक्षण होता है, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट है, तो ये उस मरीज का अधिकार है कि उसकी वो सारी की सारी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षण हुए हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो गोपनीय रखी जाए, उसको उस व्यक्ति या उसके परिवार के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना बताया जाए।
0: जी बिल्कुल, उसके बिना परमिशन के, अगर वो चाहते हैं वो अलग
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं किसी को बताना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ये एक ड्यूटी है कि आप जो है वो इस बात को गोपनीय रखें और जब जरूरत हो तभी जो है इसे आप लोगों तक।
1: बिल्कुल, और उसके ये डॉक्टर की ही जिम्मेदारी या उस चिकित्सा स्टाफ की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आम जनता की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम जानते हैं हमारे आसपास इस तरह का कोई मरीज है, तो हम उसके बारे में बखान या किसी और से उसके बारे में इस प्रकार की कोई भी बात ना करें।
0: जी बिल्कुल, तो अभी हम और भी बहुत सारी बातें आप सभी के बारे में करने वाले हैं, लेकिन अपनी बातचीत को एक छोटा सा ब्रेक देंगे और आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: दोस्तों, बड़े ही प्यारे से इस गीत के बाद हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ भरने के लिए मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, और आप सभी बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि एक पेशेंट होने के नाते क्या क्या अधिकार जो है हमारे रहते हैं। हर किसी इंसान का अधिकार है, लेकिन एक रोगी के रूप में क्या अधिकार है वो भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो रूमा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई बीमारी हमें बहुत परेशान कर रही है, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी में भी, और वहाँ टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स जो है वो डॉक्टर बता देते हैं कि कुछ गंभीर है या कुछ भी है किसी भी तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तरह से वो रिपोर्ट हमारे सामने होती है,
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा होता है
0: जी
1: कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो उनके मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि क्या मैं कहीं और भी एक बार टेस्ट करवाऊं या इन रिपोर्ट्स को चेक करवाऊं।
0: बिल्कुल
1: तो वहां एक उन्हें हिचकिचाहट ये भी रहती है कि अभी यहाँ पे करवाई है तो यहाँ डॉक्टर ये कहेंगे कि यहाँ टेस्ट करवा लिए, अब चेकअप नहीं करवाया। तो यहाँ क्या लगता है आपको, या क्या कहना है आपका, कि एक पेशेंट जो है वो सेकेंड ओपिनियन लेने का अधिकार रखता है, कहीं और जो है वो उस बीमारी की जांच परख करवा सकता है?
0: बिल्कुल रुचिका, एक पेशेंट का ये अधिकार है जब भी उसे किसी भी बीमारी के बारे में पता चलता है, हालांकि उसने जिस भी अस्पताल में गया है उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी जांच की, उसकी बीमारी के बारे में उसको बताया, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन में कोई शंका है तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए या थर्ड ओपिनियन के लिए किसी भी और अस्पताल में जाके, किसी भी और डॉक्टर से जाके उस बीमारी के निदान के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में, उसमें किस किस प्रकार का उपचार शैली है जो सही रहेगी, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करने का हक रखती हूँ। और देखो ना, कोई भी बीमारी है, हर बीमारी का एक अलग ट्रीटमेंट होती है, एक डॉक्टर का अपना तरीका होता है, तो एक मरीज का ये अधिकार है कि डॉक्टर उसको उसकी बीमारी के बारे में उसके पूरे तरीके बताए, किस किस तरीके से उस बीमारी का इलाज हो सकता है, कौन कौन सा खतरा उस इलाज के दौरान हो सकता है। देखो, कई बार हमने सुना है कि कोई बीमारी होती है तो अगर इसका हम ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो अगर हम कोई दवाई भी खा रहे हैं जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी पेन किलर ले रहे हैं, तो अक्सर सुनने में आता है कि दवाइयों के मेडिकल जो साइड इफेक्ट होते हैं, और अक्सर हमें बोला भी जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई हमें नहीं खानी
1: नहीं लेनी
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर एक मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताया जाता है, उसके डायग्नोस जो भी हुआ है, उसका किस तरह से उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, तो उसके बारे में उसके इलाज के दौरान उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर की उस मरीज को बताना। और अक्सर हमने देखा है जब भी हम सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम डॉक्टर से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पूछते हैं कि अगर हम ये दवाई खा रहे हैं तो हमें खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, तो डॉक्टर की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है बताना, क्योंकि देखिए डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा नाम देते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपका कोई पेशेंट है, उसको लगता है कि इस खान पान से उसकी बीमारी जो है वो गंभीर हो सकती है, उसको और तकलीफ हो सकती है, तो पेशेंट को ये भी बताया जाए कि उसको किस तरह का खान पान रखना है उपचार के दौरान। और अगर कोई मरीज, उसको शल्य चिकित्सा से जाना है, मान लो उसका ऑपरेशन होना है, तो ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहता है या कहीं और करवाना चाहता है, उसके लिए भी वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है। कई बार सुनने में आता है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो बोलते हैं हम फलां डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इमीजिएट ऑपरेशन करवा लो,
1: जी
0: लेकिन जब हमने दूसरी जगह राय ली तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है,
1: नहीं है।
0: बीमारी आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा अधिकार है कि हम किसी और डॉक्टर से मिलें, क्योंकि देखिए जिंदगी हमारी है, स्वास्थ्य हमारा फर्क पड़ रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेके इतना सचेत होना जरूरी है कि हम विकल्प के तौर पे या किसी भी और रूप में हम किसी और डॉक्टर से जरूर राय ले लें। और एक चीज और मैं बताऊं रुचिका, कोई भी डॉक्टर आपका जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप वहां पे अपना कॉन्सेंट नहीं देते हैं, आपका परिवार कॉन्सेंट नहीं देता है। आपने अक्सर सुना होगा जब हम अस्पताल में जाते हैं तो सर्जरी से पहले बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करवाई जाती हैं, तो एक पेशेंट का और उसके परिवार का ये फर्ज बनता है कि जब भी वो किसी पेपर के ऊपर साइन करवाते हैं, हमारा पेशेंट बीमार है, सीरियस है, तो हम डॉक्टर बोलते हैं यहाँ दस्तखत करो जी, अब इस ट्रीटमेंट के लिए आपकी सहमति की जरूरत है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है वो सब हमें जानने का अधिकार है। हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं या उस स्टाफ से पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों इस तरह के साइन आप करवा रहे हैं और इसमें क्या क्या लिखा है। तो ये हमारा राइट है। और मरीज चाहे तो वो, अगर वो चाहता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है तो डॉक्टर उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे जो अधिकार हैं जो हमें मिले हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार भी हैं और ये कानूनी अधिकार ही हैं हमारे। और अगर कोई इन अधिकारों में दखल अंदाजी करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई जबरदस्ती हमारी ट्रीटमेंट के साथ या हमारी गोपनीयता का हनन करता है, तो हम, हमारे पास उसके भी उपचार रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, कभी भी हमें, कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में जैसा हमें बोले जाते हैं और उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें क्या ना करें, तो जो मन जो भी बोलते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस भी आप सभी देखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड जो है वो फैल रहा है। तो न जाने कब किस तरह से आपको उसका शिकार बनाया जाए। तो कभी भी एक मतलब की सतर्कता की तरफ की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो आपका घर है, तो सोच समझदारी के साथ जो है हमें कोई भी स्टेप जो है वो जरूर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो फिर हमें फेस करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल। अच्छा रुचिका, एक चीज मैं और ध्यान में लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मरीज के अधिकारों की
1: जी,
0: लेकिन एज ए पेशेंट जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, हम सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर से पे या वहां के प्रबंधन पे नहीं डाल सकते हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी, जब हम अस्पताल में जाते हैं तो देखिए हमारा अधिकार है समानता का अधिकार ना।
1: बिल्कुल।
0: हम बात करते हैं समान अधिकार की, तो जब सभी पेशेंट लाइन में लगे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, कोई गंभीर रोगी आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है किसी भी प्रकार का, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि सबसे पहले हम उस पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास आगे भेजें। और दूसरा, अस्पताल में देखिए कई तरह के मरीज होते हैं, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वहां अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, बिना मतलब के हम लोग क्या करते हैं, जब खड़े हो जाते हैं तो शोर शराबा करते हैं, अपनी घरेलू बातें डिस्कस कर रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी लाइन में लग के, तो ऐसे में हमारे पास टाइम पास करने के ये मुद्दे होते हैं। तो वहां पे एक जिम्मेदारी हमारी ये हो जाती है कि हम थोड़ा माहौल को शांत रखें, वातावरण को शांत रखें, ताकि वहाँ जो पहले से एडमिट पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए डॉक्टर भी इंसान है।
1: बिल्कुल।
0: दिन में 1500 मरीजों से जब वो मिल रहे हैं तो इस शोर शराबे से उनको भी दिक्कत होती है, तो उनके काम पे भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें, और साफ सफाई का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भी हम कुछ वहां पे खाते हैं, कई बार होता है जूस पी रहा है पेशेंट या कुछ वो कर रहा है, तो इधर उधर वो कचरा ना फैलाएं, क्योंकि देखिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना भी बहुत जरूरी है, तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा, यदि डॉक्टर हमें नहीं बता पा रहा है व्यस्तता के चलते, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम डॉक्टर से पूछें हमें किस प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, हम जाने किस प्रकार की बीमारी का मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, एक और चीज, अक्सर डॉक्टर जब भी पूछते हैं कि आप पेशेंट, आप भी कभी हॉस्पिटल गई होंगी, तो वो पूछते हैं आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको जानकारी है किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी हो रही है किसी मेडिसिन से या किसी खाद्य पदार्थ से, तो आप डॉक्टर को वो जरूर बताएं, क्योंकि हमारे इलाज को जब हम अपनी ये सारी जानकारी डॉक्टर तक बताते हैं तो हमारा इलाज सुगम हो जाता है। दूसरा, पेशेंट को ये भी चाहिए कि वो अपनी कोई भी ऐसी बात ना छुपाए जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो।
1: बिल्कुल सही कहा है रूमा जी ने दोस्तों, कि ये बात अक्सर होती है कि हम वही हिचकिचाहट या शर्म के वजह से कुछ बीमारियों के बारे में हम बता नहीं पाते हैं, और कोई बीमारी जो बताने मतलब कि उसमें कोई शर्म महसूस ना हो तो वो बताते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां जो है हो सकता है कि आपकी उस बीमारी को इफेक्ट कर जाए। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बीमारी खुलकर बताइए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप खुलकर बता सकते हैं, वो आपका कोई वहाँ मजाक नहीं बनेगा, कोई आपकी वहाँ हाईलाइट चीजें नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमने गोपनीयता की बात जो है वो पहले ही की है। वो राइट है आपका कि आपकी बीमारी को जो है वो गोपनीय रखा जाए। और साथ ही रूमा जी ने एक और बात कही कि अधिकारों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार ही अधिकार ध्यान में रखे जाएं ये जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमारी जिम्मेदारियां जो कि बेहद जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, जिसके प्रति हम लापरवाही दिखाते हैं या ईगो के चलते जो है उन्हें हानि पहुंचाते हैं।
0: जी
1: तो सफाई की बात की रूमा जी ने, तो अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि लोग यही कहेंगे कि हमारा काम है, हमें एक आराम देने का काम हॉस्पिटल का है, और हम जो भी करें, चाहे खाएं, चाहे जूस पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, तो बॉटल्स हम वहीं फेंक देंगे, क्योंकि प्रशासन का काम है, जिनकी ड्यूटी है, जो सफाई कर्मचारी हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आके वो चीजें उठाएं।
0: बिल्कुल रुचिका, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था
1: जी।
0: हमारे यहाँ के एक नामी गिरामी अस्पताल की बात है कि वहाँ दिन में हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब हम शौचालय में जाते हैं तो वो गंदगी से अटे पड़े हैं। जहाँ नहाने वाली जगह है वहाँ पे लोगों ने अपने खाने के बर्तन धोए होते हैं और वहाँ पे जो बचा हुआ खाना होता है वहीं फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल स्टक हो जाता है और फिर वही पानी, और हम व्यवस्था से शिकायत करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें कि जो हमारा बचा कुचा खाना है उसको किसी डस्टबिन में डाल दें, या डस्टबिन वहां पे नहीं है तो किसी पन्नी में, किसी लिफाफे में भर लें, बाहर फेंकें, और वॉशरूम में जाके कई बार मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने सैनिटरी पैड या फिर बच्चों के जो पैड्स होते हैं उनको वहां पे फेंक देती हैं, उससे भी स्टक हो जाता है। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां तो हमारी भी बनती हैं कि हम अपना कचरा खुद समेटें और किसी को भी दोष ना दें, क्योंकि देखिए इतने सारे पेशेंट को देखने के साथ साथ देखिए सफाई कर्मचारी भी हमारे बहुत मेहनत करते हैं
1: पूरा दिन, सुबह से लेकर रात भर दिन रात,
0: और थोड़ा थोड़ा वो कचरा इतना इतना सा भी, एक एक बूंद भी अगर वहां पे स्टक होता है तो उससे क्या होगा कि वो वॉशरूम जो जो शौचालय हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं और हम जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन को दे देते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्था को हम खुद भी मैनेज करें, औरों को हम ना कहें, हम खुद का कचरा अगर समेटना शुरू कर देंगे तो अस्पतालों में जो अव्यवस्था जो देखने को मिलती है वो कम हो जाएगी और हमारे जो बीमार और तीमारदार हैं वो इस तरह की असहजता को से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब आपको यही लग रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप किसी और का कूड़ा कचरा उठाइए, हम सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि आप जो खुद का कचरा फैला रहे हैं बस उसी को मत फैलाइए, उसी को अगर आप डस्टबिन में डाल देते हैं, अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने साथ कैरी करिए, और बाहर जब भी आप जा रहे हैं तो उसे बाहर कहीं डस्टबिन में या जैसे भी है कोई सुरक्षित जगह पे वहां पे आप फेंक सकते हैं, जिससे कि किसी को भी बीमारियों का नुकसान ना हो। क्योंकि हॉस्पिटल में आप सभी जानते हैं, एक तो दवाइयां इतनी ज्यादा पेशेंट्स खा रहे होते हैं, और साथ ही अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे, गंद फैलाएंगे, तो मरीजों के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती है,
0: और मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी बीमार हो जाते हैं। तो इस सब चीज का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और रुचिका, अगर हम बात कर रहे हैं अधिकारों की और साथ ही जिम्मेदारियों की, तो जब भी किसी महिला का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होती है तो उसका अधिकार है कि वो उसके साथ परिवार का कोई सदस्य वहां पे रहे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार उसके साथ ना हो, और किसी बच्चे का इलाज हो रहा है या किसी भी प्रकार का, तो भी बच्चे के साथ उसके अभिभावक का होना जरूरी है अल्ट्रासाउंड के समय, एक्सरे के समय, ताकि वहां पे आजकल आप देख रहे हैं कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि फलां डॉक्टर ने किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया, या बहुत गंभीर किस्म के अपराध भी आजकल दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक मरीज का अधिकार है कि जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ऑपरेशन के लिए जाता है या अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, तो वहां पे उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, और महिला है तो तब तो

0: पर ही हम सवाल उठा रहे, बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है रूमा जी कि डॉक्टर अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योरली जो है वो चेकअप कर
1: बिल्कुल
0: रहे होते हैं, लेकिन आगे से हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ या कुछ भी।
1: बिल्कुल
0: तो वहां पे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई दूसरे फीमेल स्टाफ होंगे तो फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस
1: बिल्कुल
0: चीज को, क्योंकि आजकल एक दूसरे पर जो है झूठे आरोप भी बहुत ज्यादा
1: बिल्कुल
0: लगाए जाते हैं।
1: बिल्कुल। और इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हमें खुद ही सतर्क होके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि
0: जी
1: हमारे साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य ट्रीटमेंट के दौरान जरूर रहे।
0: जी और जिस इससे कि कोई गलत करना चाहे भी तो भी वो गलत ना कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, एक छोटी सी गलती से पूरी जिंदगी पर असर पड़ जाता है। तो ये बातें जरूर ध्यान दीजिए, खास तौर पे अपनी जिंदगी से जुड़ी। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, तो आइए इस अपनी प्यारी सी और खास बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और आज की ये खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, तो जैसे कि रूमा जी, हम बात कर रहे हैं कि एक मरीज के क्या अधिकार रहते हैं और क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक ही बात को आगे लेकर नहीं चल सकते। कई बार हम उसका मिसयूज भी कर लेते हैं, नहीं तो हम मिसयूज के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों। सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने जो है एक सही राइट के लिए आवाज उठाना, यही हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो रोमा जी, अक्सर जब अभी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर माना कि किसी के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी के ट्रीटमेंट में कोई चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है, तो फिर वो सारा मैशअप सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो वो जो है मरीज या उसके परिवार वाले, वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो न्याय की मांग कर सके।
0: बिल्कुल रुचिका, बहुत ही जायज सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर अधिकारों की जिम्मेदारियों की बात करते हैं और कहीं पर हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है तो हमें कहाँ आवाज उठानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी 104 नंबर पे हम कॉल करके अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं, तो हम 104 पे कॉल करके अपनी स्वास्थ्य के संदर्भ में हेल्प मांग सकते हैं। और लेकिन अगर कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो वहां पर हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका नंबर लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम बता दें ये हेल्पलाइन नंबर है 1076। और उसके बाद जो है, जिस भी अस्पताल में हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, अगर वहाँ पे हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या चिकित्सा में लापरवाही हो जाती है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम शिकायत लिखित में दे सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सारी चीज अपनी बीमारी के डायग्नोस से लेके जो भी आपके साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई, उसके साथ आप लिखित में जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी अपनी जो शिकायत है वो दे सकते हैं। और वहाँ पर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप उस अस्पताल की, वहाँ के प्रबंधन की या फिर उस डॉक्टर की जिसने भी सेवाओं में लापरवाही करी है, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है चिकित्सा के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जिला उपभोक्ता न्यायालय में भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो खुद या फिर किसी वकील के माध्यम से दायर कर सकते हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपके साथ वाकई में गलत हुआ है, लापरवाही हुई है किसी भी सेवा में, तो वहां से जिला उपभोक्ता न्यायालय से आपको जो भी आपका खर्चा उस चिकित्सा के दौरान आया या जो भी आपका वहां पे नुकसान हुआ है, चाहे जान का नुकसान है या माल का नुकसान है, तो उसकी जो भरपाई है वो उस अस्पताल को करनी पड़ती है। और जिला उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा उसका खर्चा भी जो है वो उस संस्थान से आपको दिलवाया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो ये जानकारी हमें जानना बेहद जरूरी है कि जब भी हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम किस तरह से अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं और किस तरह से अपने लिए न्याय जो है वो उसकी मांग कर सकते हैं। तो रूमा जी, बहुत ही खास बातचीत जो है हमने अपने दोस्तों तक पहुंचाई है, और साथ ही एक और खास बातचीत अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहूंगी, एक खास जानकारी कि अगर हमारे दोस्तों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है इससे जुड़ी हुई और उन्हें नहीं पता है कि हम कैसे आवाज उठाएं या कहां जाएं, किस तरह से अपनी हेल्प करें, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं या आपके साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं उस हेल्प को लेने के लिए, तो वो हमारे दोस्तों को जरूर बताइए।
0: रुचिका जी, हम अपने दोस्तों से जुड़े रहें इसके लिए हम प्रयासरत रहते ही हैं, और हर मंगलवार हम यहाँ आ जाते हैं बातें करने। ये इनका जुड़ाव है जो हमें इनके और खींच के ले आता है। लेकिन फिर भी आज के इस जानकारी में जो भी हमने आपके साथ साझा की, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या ये भी जानकारी हम तक पहुँचनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431122। आप कभी भी इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आप अपनी जो भी जिज्ञासा है उसके लिए हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी आप भेज सकते हैं, और किस तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं रूमा जी अधिवक्ता के तौर पे जो है धर्मशाला में कार्यरत है, तो आप किसी भी रिलेटेड।
0: बिल्कुल, मैं इस समय जो हूँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में एज ए लॉ ऑफिसर हूँ।
1: जी,
0: तो जो भी समस्या इस तरह की आपके जीवन में आती है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, बच्चों से संबंधित, बच्चों से जुड़ी कोई अगर आपको समस्या फेस करनी पड़ रही है और अगर जरूरत है आपको हेल्प की बच्चों से संबंधित, तो आप तब भी रूमा जी से जो है संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उस समस्या का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो रूमा जी, मुझे लगता है कि अभी समय जो है वो हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान, और ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। अगली कड़ी में फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी।
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: हमारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: पार्टी दी मैं है कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने फिर यहाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात ऊपर दर्शो तो माटी दी मैं कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तो हाँ तक रहेंदे है 2 से 3 बजे तक। ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कन्या हाँ करने गल बात जड़े से जरूर करी सकते। कार्यक्रम दी जड़ा शुरुआत है से हाँ जरूर करी दी है कन्या आगाज भी इस प्यारे दे भजने कन्या प्यारी दिया फरमाइशा कन्या करीता है। ये फरमाइशा जो आई है कोठियाँ जलोर ते कन्या तीना दा नाम है सुनील जी तीना तक हाँ एगी ते फरमाइश पहुँचाई तो आज हाँ कार्यक्रम च खास गलबात करनी है क्योंकि हर दिन हाँ वास्ते खास होंदा हर दिने दी अपनी जेड़ा खासियत है से जरूर होंदी तो अजकने दिने दी क्या खासियत है क्या जेड़ा हाँ खास दिन जेड़े से बना देन सभी जरूर तुह तक पहुँचाने है क्योंकि हर दिन हाँ जो कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई सीख जेड़े से जरूर देख रही जाता है तो आज यहाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग जेड़ा मुक्त दिवस तो जरूर इदे उपर अहाँ गलबात करनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते। पहले श्रोता जुड़ चुके हैं कर देन तिना कन्ने गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: जी नमस्ते शशि जी
0: स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद जी ठीक ठाक बढ़िया तुसा सुना
0: जी अहां भी ठीक हां जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना की है जी?
1: ये मैं ते न्यारे दे बोला दे जी रीना
0: जी। रीना जी कदिया की चल रहा तुहंदा आज कना दिन क्या काम कार छेड़िया
1: तुहां बड़ा वधिया जी बस रेडियो सुना दे तुहाड़े सुत जो कने रेडियो सुनो ते
0: जी अच्छा रेडियो सुना दे।
1: जी
0: तरीना जी आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन आज 3 जुलाई है तो 3 जुलाई जो हाँ जेड़ा खास दिन बना देन से बना देन अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ना जी।
1: हाँ जी
0: तो तुहें पता है कि प्लास्टिक दा कम ते कम यूज करना हाँ वास्ते कितना ज्यादा जरूरी है।
1: प्लास्टिक तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना यूज नहीं करना चाहिए ना
0: जी।
1: तो बीमारियां इस कन्ने एक साढ़े कोई ना डंगरे पशु पशु ना लफाफिया जो कोई खाए नहीं है छुट्टी दे उन्हें बेचारे की नुकसान
0: जी
1: ये घट से घट यूज करना चाहिए प्लास्टिक का था
0: जी। कने प्लास्टिक दा जेड़ा कई बार तो हाँ दिखते न नदी नाले न तिना च भी घरे दा कचरा तो हाँ निकाली दे पर कुथी न कुथी तिस कचरे जो हाँ कुतु फेंका दे जेड़ा
1: हाँ
0: नदी
1: जी, हाँ
0: नाले
1: जी
0: न तिना जो प्रदूषित
1: हाँ
0: करा दे इसी कन्ने हाँ अपने आस पास दा जेड़ा वातावरण है उस जो भी प्रदूषित जेड़ा है से जरूर करा दे ना जी।
1: हाँ जी
0: वैसे भी हुण बरसात दा मौसम चलिया तो हाँ जो ज्यादा अपना ख्याल रखने दी जरूरत है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जितना हो सके उतना प्लास्टिक दा कम से कम यूज करा या करा ही मत ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: और आजकल चले जी प्लास्टिक है मैडम जी बच्चा ले कोई चिप्स कुरकुरे खाने पीने का सामान हर चीज है जो प्लास्टिक
0: हर चीज प्लास्टिक पर ही यहाँ जेड़ा से निर्भर हुई हो ना जी।
1: हाँ ट्रैक्टर जी आजकल हर चीज प्लास्टिक दे दे
0: प्लास्टिक रेडीमेड हर चीज रेडीमेड पर है। अगर हाँ पहले दी गल करिए या कपड़े होंदे थे तो
1: दे लिफाफे कागज होंदे थे उस विच दिंदे हुण तां हर चीज है ही है बस लिफाफे यूज हो रहे हैं प्लास्टिक दे
0: जी। कने कपड़े होंदे थे ता एक्स्ट्रा कपड़े न तो तिदियां जेड़ा खिंदा न से बनाई लेंदे थे फिर मतलब
1: हाँ जी
0: यूज
1: हाँ
0: चाहिए
1: जी
0: आंदे थे ना
1: मैडम जी ये खिंदा था उन्होंने भी ये रिवाज ही चली है खिंदा था ये नामों निशान ही मिटाई था जिस वाला दिया हैन भी चलो फूक के दिया देना
0: जी जी पर तिना दी अपनी खासियत है ना जी। गर्मी है अगर तो
1: मैडम जी खिंदा है ता कोई रीस ही नहीं है जिसके लिए ना कोई बीमारी होंदी थी ना कुछ आजकल आज बड़े ये कंबल करने गद्दे गुद्दे ले रहे जी दिखने शो आई ना दिखने अंदर सो बीमारी है नहीं ना
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी कहने गर्मी है च भी से पूरा ठंडक वाला जेड़ा एहसास है से दिंदियां ना जी।
1: ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਸੱਸੀ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਖਿੰਦੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਖਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਖਿੰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: जी।
0: तो देखो पुरानी चीजें जो हम बिल्कुल खत्म करा दे ठीक है, जागरूक होना भी जरूरी है, पर पुरानी जेड़ा चीजा न तिना दा यूज अगर हाँ खत्म कर देन तो कुथी ना कुथी हाँ अपनी जिंदगी जो नुकसान दी और ता जरूर
1: नुकसान
0: धकेली।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: वो तो है
0: जी। तारीना जी आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: को सुनना जी ये बरसा के टोल दा सुनना दरानी जठानी है
0: सारी भी माटी दी मेह कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ी सकते करने गल बात से जरूर करी सकते करने जितने भी श्रोता हाँ जो लाइव फेसबुक दिखा देना तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा तिना दा नमस्ते है क्योंकि जिंदगी दा सफ़र है ना जिंदगी दा जड़ा सफ़र है से अगर हाँ खुशियां ने बिताते न तो कुथी ना कुथी हाँ अपनी जिंदगी जो भी जरूर जड़ा है से इंजॉय करी पाते न तहाँ तक फेसबुक के माध्यम ने भी फरमाइश जड़े से पहुंची हुए सभी जरूर आहत इन्हें तक पहुंचानी है। दर्शो तो इसी करने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी अगर बढ़ाना है पर अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने करी लेंदे न गल बात। हेलो
2: शशि मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी
2: ठीक ठाक मैडम जी
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक
2: प्लास्टिक दिवसीय तुम्हें बड़ी बड़ी मुबारक
0: जी
2: बड़ा अच्छा टॉपिक लिया तो मैडम जी
0: जी
2: बहुत अच्छा
0: जी,
2: बड़ी खुशी की गल है मैडम जी सारे लोग का जागरूक होना चाहिए ना कि प्लास्टिक मत यूज करा भी तुम्हारे यूज है तो या फूकी दिया कुछ देखो कई कुछ पानी सड़ दिया कोई कुछ सड़ दिया जानवर नुकसान हो रहा मैडम जी
0: जी
2: हाँ जी अब थोड़े लोग का रोक टोक होना चाहिए ना
0: जी जी
2: हाँ जी जी
0: जी जरूर जी तो हाँ कार्यक्रम जो इतना ज्यादा प्यार दिन दे करने
2: हर गल बात मैं तो बड़ा पसंद करता प्रो मैं तो मैडम जी कोई 35 साल पुराना रेडियो रखे ना
0: जी तो बड़ी अच्छी बात है जी
2: हाँ जी
0: जी
2: जनगणना बोले तो है तो नाम देना चाहिए रखे 40 साल 50 साल
0: जी जरूर जी क्योंकि आजकल वैसे भी रेडियो सुनना ज्यादा पसंद नहीं कर देना
2: जी मैडम जी बड़े ही आज का सारे डिवाइड करता तो रेडियो रखा ना देखा गुंजन का प्रोग्राम होता तुम सारा सुना अच्छे अच्छे विचार प्रकट करा दे अच्छे मारे अनाउंसर है ना समान लाने प्लास्टिक थैलियां मत लो कपड़े इतना पुराने कपड़े कमीजा थैलियां सी प्राचीन काल साल पुरानिया बारह महीने खिंद लैनिया प्यारा समझा कर सारे मैक्सिमम कमरे कह दे बना दे कह दे बीमारियां दुनिया भरी खिंद कि अच्छे अपने हाथ बनी मम्मी हाथ आई
0: जी जी अलग ही
2: तो बड़ा प्यार मतलब बहुत बड़ी प्यारी है मैडम जी
0: जी
2: मैडम

0: सखी जी होंगे बड़ा अच्छा मैं सुनता ना तो पौना घंटा बड़ा अच्छा मजा आता मैडम जी
1: जी
0: इंका
1: धन्यवाद
0: पौने गला देन
1: जी
0: हाँ जी
1: धन्यवाद
0: हाँ जी
1: जी
0: मैडम
1: तो
0: जी
1: हुंदा
0: बड़ी खुशी गल फेसबुक च चलाई से पौना
1: जी जी जी
0: ठीक है मैडम जी बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: जी
0: थोड़ा
1: तो हुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते
0: ठीक है मैडम जी तो
1: जी
0: अपनी मस्तन दा सुनना थोड़ी पसंद आता
1: जी जरूर जी दर्शकों तो सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने तो कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तुह तक पहुँचाते हैं ईसा प्यारी दिया फरमाइशा जो ये फरमाइश अह तक पहुँची हुए फेसबुक के माध्यम ने कने तिना का नाँ वे चरणदास जी कने से रहने वाले न खनियारा ते तिना तक अह फरमाइश पहुँचा देना तुह सारे भी इंज

हाँ बोला दीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना दीन अपनी रेडियो दो शशि कने कने आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दीन से करा दीन कि आज हाँ क्या जेड़ा खास दिन या खास दिवस बना दीन 3 जुलाई जो पहले भी मैं तुह तक पहुँचाई है फिर ते तुह तक पहुँचाई दी है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जड़ा से आज हाँ बना देन तो जरूर तो हाँ मेरी जड़ा गलबात है तिहा जो भी ध्यान ने सुना देने कने जड़ा तो दिया फरमाइश है सभी जरूर अहाँ तुह तक पहुँचा देन दशो तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य है कि प्लास्टिक जड़ा है तिसदे नुकसान बड़े ज़्यादा न तो तिदे उपर ही जागरूक होना भी यहाँ वास्ते जरूरी है पर ये नहीं सोचना है कि आज यहाँ ये दिन बनाना है या आज यहाँ प्लास्टिक का कम यूज़ करना है या प्लास्टिक का यूज़ जड़ा है से आज का दिन ही कम करना है। हर दिन हाँ प्लास्टिक का जड़ा यूज़ है से करना ही नहीं है। कपड़े दे जड़ा थैले न तिदा यूज़ अहाँ करी सकते अगर अहाँ कोई भी समान लेकर आते न तो इस जड़ा से अपना ही कपड़े का जड़ा थैला है या लिफाफा है से अहाँ जरूर बनाई सकते कने तिदे इसका जेड़ा यूज़ है से जरूर करी सकते। तो इसी कन्या हाँ अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न अगली फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो वह खनियारा ते कने तिना का नाम है रीना जी। रीना जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना।

मुलादीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने फिर त्याहा वापिस अपनी गालबात ऊपर आई हो न कने तोहा सारी भी इस गालबात कने जल्दी जल्दी जुड़िया अगर नहीं जुड़े न सच्ची गल्ला कई बार से हाँ जो हमेशा कड़वियाँ लगदियाँ न कोई भी हादसा होंदा है तो सिर्फ हाँ दा जिंदगी दा गवाह है कि जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी जड़े से जिंदगी च इंसान जड़े से हमेशा सफलता दी ओर भी बढ़ता है अपनी जिंदगी जो बेहतर भी बनांदा है पर जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी जड़े से इंसान जो सब कुछ जोड़ते जोड़ते जड़े से आखिर से खुद ही जड़े से बिखरी आंदा है। कोई जड़े से दौलत दे पीछे भाग्या है या कोई जड़े से रिश्तियां जो बचाने दे पीछे भाग्या है पर वक्त जड़े से चुपचाप आ जो सब कुछ समझाइंदा है। वक्त जड़े से अपने हिसाब ने चलिया हुंदा पर हाँ फिर भी जड़े से वक्त दे हिसाब ने नहीं चलते कि वक्त जड़े से यहाँ जो सब कुछ सिखा दे कि जिंदगी दा जड़ा सफ़र है से पता नहीं कल दिया थमी आना है से यहाँ जो भी पता नहीं है तो जो भी नहीं पता है पर हमेशा अगर हाँ जिंदगी दे सफ़र जो हर दिन इंजॉय कर देन हर दिन खुशियाँ ने बिता देन तहाँ दा ये जिंदगी दा सफ़र बिल्कुल बेहतर बनी आता है। तो श्रोताओं आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन क्या गल बात करा दे तुहां सारे जो भी पता है कने तुहां सारे भी मेरी जेड़ा गल बात है तिहा जो जरूर सुना देन। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक जेड़ा वैग दिवस है मुक्त दिवस जेड़ा से आज हाँ बना देन प्लास्टिक दा जेड़ा से बिल्कुल कम यूज़ करने अगर हाँ प्लास्टिक दा यूज़ कर देन तो इसते बड़े ज़्यादा नुकसान जड़े न से दिखने जो मिलते न अहां दा जेड़ा पर्यावरण है अहां दी जेड़ा प्रकृति है हर कोई यही चाहता है कि हाँ अपनी प्रकृति दी जेड़ा सुंदरता है उस जो हमेशा बनाई रखन तो ज़रूर ताई बनाई सकते जालू अहां अपनी प्रकृति दी रक्षा कर देन या हर दिन जो सेलिब्रेट या जागरूक होंदे न कि हर दिन बनाने दा क्या मकसद है तो हर दिन अहां दी जिंदगी च बेस्ट है अगर अहां हमेशा उस पर नज़र जड़े से दौड़ांदे न। तो श्रोताओं तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे कन्ने अहां कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकदे। गलबात करने वास्ते जड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुज्जेगा ताई तां तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टैक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर जल्दी जल्दी जड़ा से नोट करा नंबर है 7018117091 ताई नंबर तुहां तक पहुँचाईता है तो ज़रूर इसे ही गलबात करने अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी अगर बढ़ाते हैं कने तो जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश दी ओर कार्यक्रम दा जेड़ा माहौल है से थोड़ा दिया चेंज करते हैं कने रौनक आला जेड़ा माहौल है से फिर ते लेकर आते हैं।

0: दर्शकों तो सारे भी जरूर एक एक ढुमका जड़ा है से लगाई ले आना है, क्योंकि गीत संगीत जड़ा है सियाह की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। तो तुह सारे भी गीत संगीत भी सुना दे होने अपन जड़ा फरमाइशा सभी इंजॉय करा दे होने। इसी कन्ने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत
1: जी, नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी सब ठीक है मैडम, तो ठीक है सब
0: जी? यहां भी ठीक है जी। तो कुथु ते बोला ते?
1: यो ते बोला दा
0: जी।
1: चल प्रोग्राम बिल्कुल सही, लोग भी ठीक ही बोले पर लोग नहीं मानते थे सब ना
0: जी जी।
1: पहला दस माह दे रे कूड़ा कट कर अपना
0: जी,
1: तो जो दिखा रहे तू कोई ना फेंकी आ देखो ला नाले आ जापू भरिए दे लोग गंदे ना चल बोले करेंगे
0: जी जी,
1: ये अच्छे काम नहीं है
0: जी।
1: हां जी मैडम जी, अगर समझ ही देनी है कितना समझाने नहीं समझा
0: जी जी, समझना तो जरूरी है।
1: समझाते भी ठीक नहीं है काम, हर जगह भरा दे
0: जी, रेडियो सेट दी आवाज कम करी लें जी। जी करी ले आवाज कम तो हां जी, वैसे तो आज हां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे न से करा दे न प्लास्टिक दा जेड़ा यूज है से करना ही नहीं चाहिए ना जी।
1: नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी,
0: बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि
1: जी अपने परिवार जी बोल दे दादी तो लेंगे ना कि जलाई की
0: जगह जी,
1: हां तो खुद ही जलाएंगे
0: जी जी। अगर हां खुद पॉजिटिव सोच रखते न या अपने परिवार जो समझांदे न तो जरूर समझदे न जी। जी चलो अच्छी गल है जी, बड़ी अच्छी गल है ना जी, क्योंकि जी
1: कोई भी चीज खांदे पशु खांदा पक्षी खांदे ना फिर हर चीज मरदी है
0: जी जी। वैसे भी पशुआं दी गल करिए ता सड़कां च तुहां दिखा दे होणे ना कुथे पशु जिहड़ा ऐसे कुछ भी खा दे ना जी, प्लास्टिक भी है कुछ भी है।
1: हां जी मैडम जी, हां खुद ही दिखदे रहंदे साडे ना ये काम कई बार मारे पशुआं दा
0: जी जी। अपना ना नहीं दसिया जी?
1: मैडम जी मेरा नाम परशुराम
0: जी जी। तो तुहां इह कार्यक्रम रोज ही सुनदे जी?
1: हां जी बखर सचिन जी बैठे ही आ
0: जी। अच्छा

0: जी जी
1: जी जी अरे यार ना
0: जी
1: इन्हें पता ही है सारा मेरा ये शेर सिंह का गाना है
0: जी
1: राम राम जपले बंदिया
0: जी राम राम जपले बंदिया
1: हाँ ये बेला कदम वाला
0: जी जरूर जी ये फरमाइश भजन तो तक पहुंचा दी जी चुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा
1: जय माता दी
0: जी ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਆਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਵੇ ਆਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਪਿਆ ਗਏ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਕਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਸਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ अहंकार कने संस्कारा च बड़ा अंतर है क्योंकि अगर हाँ अच्छे संस्कार रखते हैं तो हाँ हमेशा अपनी जिंदगी जो सफलता की ओर लेकर जाते हैं कने अगर हाँ अपने अंदर अहंकार रखते हैं तो कुथी ना कुथी हाँ असफल अपनी जिंदगी च हो जाते हैं तो हमेशा अच्छा जिहड़ा व्यवहार है से जरूर अपने अंदर रखा तो इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ जो लेकर चलते न अगली फरमाइश दी ओर क्योंकि तो हाँ सारे भी इंतजार जड़े से करा दे होने न कि कलू दिया तो हाँ सारे दिया जड़ा फरमाइश है न से हाँ तो हाँ तक पहुँचान तो ज़रूर इंतज़ार दी जड़ा घड़ी है से बिल्कुल ख़त्म करनी है तो हाँ वास्ते पर थोड़ा जिहा इंतज़ार तो करना ही पौंदा है क्योंकि कोई भी काम है अगर हाँ अपनी जिंदगी सफलता हासिल करना चाहते न तो मैं यहाँ जो मेहनत करना पौंदी है तो इसी कन्ने अगले जिहड़ा श्रोता है ना तिना कन्ने कर दे न गल बात हेलो
2: हेलो नमस्ते जी
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
2: हाँ जी बढ़िया सास है ना
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक हैं जी तो हाँ कुछ ते बोला थे कने तो हाँ दा ना किया है जी
2: हाँ उसे ले जराएं थी बोलना
0: जी कुछ ते बोला थे जी
2: उसे ले जराएं थी
0: जी अच्छा उथड़े ग्राएं ते बोला थे
2: जी
0: कुंडिया गीत तो हाँ सुनना पसंद कर की जी
2: बाबा फूल लकीरिया लाल
0: जी जरूर जी ये फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: थैंक यू
0: जी वेलकम जी दशो तो चल दे न कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह तक पहुँचा दें इस प्यारी दिया फरमाइश है जो तुह सारे भी इंजॉय करा क्योंकि इंतजार जड़े से बिल्कुल तुह वास्ते ख़त्म कर दें कने तुह तक इस प्यारी दी या फरमाइशा जो जरूर अहां पहुंचांदे ना

दर्शकों तो सारे ये भजन ये फरमाइश सुनी कने इसी गीत इसी भजन कने फिर ते अगे बढ़ने कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुँचानी है।

पर यह है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो शो तो तुम सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो तुहां सारे अपनी रेडियो शशि जुदिया अनुमति इसी गीत कन्ने कन्ने नहीं खुश रहा हसते रहा कन्ने अपना अपन दा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा कन्ने प्लास्टिक दा कम से कम यूज़ करा या बिल्कुल ही यूज़ चढ़े से मत करा। तैसी करने तो हो सारी अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई। शिंगे और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
9: चलो बच्चों खाना लग गया।
10: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
11: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
9: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडिगुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आप सभी आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल, कार्यक्रम को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं, और 4 बजे जो है वो आपका अपना गद्याली कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे बहुत ही खास गेस्ट जो हैं वो आ जाने वाले हैं। तो ज़रूर सुनिए, बने रहिएगा आपके अपने वेडिगुंजन धर्मशाला के साथ। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का आनंद आपके अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: अरे गेस भी
3: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

0: नमस्कार श्रोतो, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और हाँ तुसू अगे तुम अपना आज से वेड़ी जो कि सचिन कपूर हाजिर बचूगा जी कार्यक्रम इन अपनी गप्पा लेकर है ना तो फेसबुक के माध्यम तो भी अजकल लाइव ही छू कर दिन तो इन्हीं थो भी अह लाइव के सो कंटिन्यू करी देंगे अपना बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहे सभी श्रोता गणरा क्या हाल चाल है श्रोतो तुंदे उम्मीद करते हैं तुंदे हाल चाल बिल्कुल ठीक बुने फिट एंड फाइन बुने खरे बुने अपने घरे मस्त बुने तंदुरुस्त बुने और हट कट्टे बुने हिन श्रोताओं आज का नया कार्यक्रम बड़ा खास था और तुसू पता जान भी आऊँ बल्लो कि अचकना कार्यक्रम खास है तहने असू कि इनकी कम्युनिटी रे कोई ना कोई पर्सन के सो जरूर जुड़ रहे बुंदे चाहे सो इन सिंगर बुन चाहे सो इन राइटर भून टीचर भून जाए सो किसी भी फील्ड में के सो अपना योगदान दिच्छू करते भून तो जहने भी मौका मिलता है सो तो तुसू अगे है जरूर इन जो ये जो पर्सनैलिटी ने इन तुसू अगे के सो जरूर है रूबरू करवाते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम सचिन कपूर है, कार्यक्रम इन अपनी गप्पा लेकर आऊँ 91.2 FM हाजिर भूआ हा श्रोतो और तुंद अपना गादा कार्यक्रम हाँ तो सब श्रोता रोजाना ही जुड़े भी सकते हैं 7081809 पर कॉल करी करे नंबर अक मौके फिर हम शेयर करना 7081809 पर तो है सब श्रोता कॉल करी सकते हैं। चलिए जी अजबोगी सतीश कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि इनके लोक गायक ने गदयाली लोक गायक ने और बहुत सारे मंच इंजा के सो कर रहे हैं चाहे सो धर्मशाला हुआ चाहे धर्मशाला तो बाहर जगह हुआ और गाने में बहुत रुचि रखते हैं। तो आइए जी स्वागत कर दें यारा सतीश कुमार जी तुंदा वेड़ी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन।
1: नमस्कार जी, नमस्कार रेडियो गुंजन का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और सच में भाई तुंदा दिलों धन्यवाद उसे मुझे मौका दिता आज रेडियो स्टेशन इन्हें का।
0: चलिए जी धन्यवाद और एक कार्यक्रम जी की है बखूबी जानते हैं श्रोता हूँ कि इनका एक गादा कार्यक्रम है गदयाली अंदर ही इस कार्यक्रम जो कि है सो ब्रॉडकास्ट करते हैं और एक खास गल इस कार्यक्रम रही और ये अनोखी गल भी है अनोखी गल जो कि मुझे ये लगता कि वेड़ी गुंजन एक ऐसा रेडियो है जो पिछले सतीश जी तुसू अभी थोड़ा क्या दसना चाहता जो पिछले 7 साल थो किया सो अपने इस इनके इस गदयाली कार्यक्रम जो कि सो ब्रॉडकास्ट करवाओ करता है तो ये दिल तो धन्यवाद वेड़ी गुंजन रहा भी और इनके डायरेक्टर संदीप परमार सर रहा भी MD साहब रहा धन्यवाद तहे दिल तो और असुगी लोक गायक सतीश कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो सतीश जी स्वागत है तुंदा बचेगो हा बहुत सारे गीत तो है यूट्यूब में गया सो कड्डे पे हैं
1: जी सर।
0: पहली बार तुंदा गया सो रेडियो रे माध्यम तो लाइव भी बचू करता है ना पहले तो ये दसा नर्वस तो नहीं कदे लग रहा
1: था। ठीक है ओके सर
0: पक्का ओके
1: जी जी
0: एरा भी इंदा फेसबुक लाइव चल रहा तो है एरा भी नजर किया सो दड़ाई सकते हैं ना ता नर्वस नहीं ना बिल्कुल
1: नहीं अच्छा ओके सर
0: ओके फील करो कर दें। चलिए बहुत अच्छी गल है ओके फील करना बड़ी अच्छी गल है। तो सतीश जी चलिए आगाज कर दें रोजाना है आगाज कर दें आज जितनी आवाज़ में किया सो जितने भी श्रोता सो होगी बन रहे इस समय लाइव आगाज के सो कर लेंदे यानी कि अक प्यारा दे गीत जो भी तुसो अच्छा लगता है वो सो तो है जरूर होना है।
1: शुरुआत करनी वो उड़ा देवी बन्नी मातरम भजन दो लाइन तो स्वस्थ है अली मु रिलीज करना है तो दो सब तुंदे वास्ते ओ खोले अखियां बो माए पिठ मत घेरे हेरे बो ऐसा देली।

0: कुलारी वो बेबी जो मनुआ। अभी ये जड़ा गाना मेरा एक्चुअली रिलीज होना बस नेक्स्ट मंथ तक चलना, एक्चुअली बन्नी मात्रा बजना कूलर देवी रा, तो मैं कोशिश कर रहे इस गाने रे तो ये दो लाइन ना तो सुबह तक मैं कोशिश करने रे लग गए भी।
1: जी बिल्कुल, प्रयास किया, प्रयास करने वाला व्यक्ति की सो कभी भी असफल ना बंदा, और प्रयास ही जिंदगी रह गया सो मुझे लगता दूजा सब भी मोटा इंदा जिंदगी रा काम बंदा के प्रयास किया सो हमेशा कर दे रहे, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। ता श्रोताओं जिनके तो सब जानते हैं कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही, और इस कार्यक्रम में तो सब जरूर जुड़ी सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7081807098 पर। ताइए जी कार्यक्रम मंज सभी पहले तो धर्मशाला रहा मौसम दू 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस समय, और न मेरी गल करूँ तो श्रोताओं जति अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बलते हैं 88% इस समय ह्यूमिडिटी हा, ह्यूमिडिटी हा, नमी हा, है ना। तो चलिए जी आगाज कर लेंगे इन कार्यक्रम रह यारे गौरे इस गीता सो के बंगड़ी रचा, और भी बहुत सारी गलबात की सो सतीश कुमार सो गया है जरूर कर ले, लेकिन आइए फिलहाल आगाज कर दें कार्यक्रम रे इस गीता सो के बने रहे तो सब रेडी गुंजन रेसी।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही हैं। बहरहाल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप मौके फिर सभी होने वाले रहे सभी श्रोता गण रहे तो सब हूँ कर देने हिंदी अपनी गप्पा जो अपने गद्याली कार्यक्रम जो बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट में 7088809 पर कॉल कर सकते हैं। सतीश कुमार जी इन देखे हैं सो लोक गायक हैं गद्याली लोक गायक हैं और बिल्कुल जर्नी इन की सो बड़ी कम एज में गया सो शुरू करी दी थ्रू यश होता हूँ और सो कि तुम दसना चाहता कि लाइफ में ना बहुत सारे कोइंसिडेंस भी बनते हैं इंसान सो की हक व्यक्ति सो की किया सो बहुत सारे कोइंसिडेंस बनते हैं। कुछ कोइंसिडेंस ऐसे बनते हैं जो सो बहुत कुछ किया सो सिखाई करी गंदे है ना। तो सतीश कुमार सो की भी कुछ ऐसे कोइंसिडेंस बछू रहे हैं जो जितने भी श्रोता या जितने भी युवा और युवा चेहरे जो न जो हेर ल तीनों मुझे लगता है कि थोड़ा करे गाइडलाइन की सो जरूर मुड़ेगा नहीं यार एक स्टोरी तो जरूर दस ले लेकिन फिलहाल इन श्रोता सो के कनेक्टेड हैं कुछ दिन कौन बोलूँ दिन। नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी वेड़ी गुंजन माँ स्वागत है।
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोलूँ दिन और कड़ी थो बोलूँ दिन बाबा बड़ो थो।
1: हाँ जी
0: क्या बात है बाबा बड़ो थो तो बाबा बड़ो गर्मी किधर है पहले तो ये दस दिया
1: वो बुरा हाल है गर्मी किधर तो
0: बुरा हाल है
1: बड़ी हरी गर्मी
0: है तू है रहने वाले बाबा बड़ो रन की रहने वाले करके होर दर रन तो बस ही गया
1: ना ना तो तेरे बाबा बड़ो रहे
0: अच्छा बाबा बड़ो रहे क्या बात है क्या बात है। मुझे लगता है कि शायद तो है पहली बार कॉल करे
1: हाँ पहली बार करे
0: पहली बार कॉल करे क्या बात है। कितने साल था इस कार्यक्रम जो हूँ कर देती है तुम्हें जी
1: काफी
0: साल हूँ अच्छा क्या बात है तो 5-6 साल थो तो इस कार्यक्रम जो हूँ कर देना और कॉल किए सो तो है आज करे
1: आज करे एक है
0: एक है मान जरा तू 5 साल कनेक्ट होने रहा टाइम ना लगो हाँ जी
1: हाँ जी
0: मिले तो 5 साल कनेक्ट होने रहे टाइम ना लगो पिछले 5 साल था तो है कार्यक्रम
1: हो कर दें टाइम ना लग
0: जाता अच्छा क्या काम कर दें तो है जी
1: घंटी काम कर दे सर
0: क्या बात है क्या बात है। तो ये काम तो है अल्ले भी संभाल करे रुक रहा मतलब है ना जी
1: ना ना काफी साल मिल गए 20-22 साल मिल गए काम कर दे
0: क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया। चलिए जी ता कुंदन गीत होना पसंद कर ले जनाब ओ भाई तेरे नखरे भारी अच्छा ओ मेरी लाड़ी तेरे नखरे बड़े भारी लाड़ी रे नखरे भैया भारी हुंदे वे बोलो तू कि बह कर लिया
1: बड़ा जबरे जबरे ना हुंदे ही ना भाई
0: अबे अबे अबे अबे कस मनाने था ना अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी तुम्हारी फरमाइश में गीता है जरूर होना ले नमस्ते
1: ओके।
0: तो श्रोतो चलिए हंसा मजाक के सो भी चलते रहना चाहिए क्योंकि जो जिंदगी बड़ी सीरियस चलाना की है सो बड़ा मुश्किल रहता हमेशा है हर टाइम है सीरियस रहन हर टाइम है गुस्से में रहन था जिंदगी कटना की है सो मुश्किल बुझी जी है ना। ये जिंदगी रे कुछ ऐसे पल बुंदे हैं जो हंसे मजाक करी करी भी किया सो गुजारने चाहिए। बहरहाल असू की सतीश कुमार जुड़ रहे हैं अज फेसबुक के माध्यम तो भी तो है हेरू करते बुने और बिल्कुल वीडियो रे माध्यम तो हूँ कर दे हिंद तो है। तो ये चलते हैं सतीश कुमार जी ये दसा कि तुम्हें स्कूलिंग कड़ी हो पढ़ाई लिखाई की सो कड़ी हूँ करी तो है
2: स्कूलिंग मेरी छूरिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे सुक्कू घाट मेरे करेरी ग्रां तो 3 किलोमीटर अगे तथी बाद 8वीं तक तड़ी 8वीं बाद 10वीं लेकर प्लस टू तक मैं करूँ बॉय स्कूल धर्मशाला तथी बाद कॉलेज करूँ चंडीगढ़।
0: अच्छा
2: जी
0: क्या बात है इनकी बॉय स्कूल तो बात तो सीधा उड़ारी की सो चंडीगढ़ जी मारी
2: जी।
0: अच्छा तो चंडीगढ़ क्या है क्या कोर्स करे तो है
2: चंडीगढ़ में ही मेडिकल का कोर्स कर रहा।
0: अच्छा।
2: थेरेपी का काम भी करना। एक्चुअली ब्लड सैंपल वगैरह सुगर डायबिटिक का जड़ा है मरीज न त्यार ऐसा हेल्थ केयर सेंटर खोलू रहा।
0: अच्छा।
2: सतियों सर्विस दी छोड़ना इधर 10 साल हुए गए मुझे काम करने दे।
0: अच्छा
2: जी जी तो सोगी सोगी संगीत जड़ा है भी सोगी सोगी करते रहते ना।
0: अच्छा चलिए संगीत में रुचि की है सोखड़ियों आए तो सोखड़ियों लोगो का सिंगर जो होने करे लगो कि मुंजो भी किया सो संगीत करना मु भी संगीत में किया सो हागू बड़े गाना या मु भी संगीत में किया सो नील बुच गाना लील बुच गाना।
2: एक्चुअली पहले हल्के हल्के होंगे तो अस हरदे पहले जरूर डीवीडी का जमाना या टीवी है ना तो सीडी कैसेट चलते अस हरदे तो लगे नचना शैल लगती अस बोलने कभी अस भी मौका मुला है नचुरंदा है लोग रुक रहा है तो ये अस शौक दे के हूं कि मतलब अस भी अक चाह थू तो एक्चुअली तीन हरे हरे करे फिर अक दिन एक्चुअली अज का सिंगर है ना तेरा नाम लैना ना चाहता तीन एक्चुअली मुझे बोलू कि तू अज का मॉडलिंग का मौका दिला फर्स्ट टाइम थू अक शौक थी तीन गाना कटना वाला रिकॉर्डिंग जरा थोड़ा पैसा लाए दिया थोड़ा ना मुझे लगू कि ना कुछ ऐसा करा कि अगे बढ़ा कि अस भी कुछ अगे करने के बंदे अस भी जान थोड़ा तथियो प्रेरित हुआ ता करके थोड़ी कोशिश करना रहे अक दिन प्रोग्राम लगू करना जी ना नुआला होंगे इंदा गद्दी कल्चर तड़ी सिंगर छुरी है और भी इंदे भाईचारा आख दो कहना जिया सुनील राणा प्रवीण हंस नींदे तीन हूं गंदा बोलू ठीक है वो करना थोड़ा अगे बढ़ अगे रुचि लभ ला तू इं चीजा ज्ञान रखना तो तीन तने मुझे पता ना एक्चुअली कड़ी कह करना कह कुछ पर तीन थोड़े मुझे हौसला दिता तो तथियों बाद थोड़ा फिर चंडीगढ़ जॉब करना चली गो फिर तड़िया शौक तू एक्चुअली एक बार गाना लगाई बच्ची शौक कुछ गाना लगा तो मुझे कुछ गाना ना फिर तड़ी भी ये मेरे फ्रेंड थे हसी मजाक के बोलू बोलू सतीश भाई तू जिंदगी कुछ कर ले पर सिंगर मत बन दा मुझे सो गल थोड़ी अक खाई गई अंदर तथियों बाद में फिर कोशिश करी गई पहला गाना कडू तथियों बाद तीन तीन कहने नॉलेज आ फिर अगे तो चूर पंज एलबम आवे जितना अस भगवानी दया हूँ इंदा अस पेश करूँ
0: पेश करो क्या बात है ता तुहे दसो कि तुहे नुआला भी किया सो गुणगान कर दे शिवजी भगवान रा तो चलिए असु भी हुनाई दे और जितने लक्ष्य होता हुनु कर दे दिनों भी हुनाई दे कि किस प्रकार होगी तुहे गुणगान कर दे भोले शंकर जी का।

0: मिया। धन्यवाद।
1: चलिए जी, कोशिश करने वाले दी कदी हार ना बुंदे। सतीश जी असू बया करू कर देन और असू दसु कर देन। इन बहुत सारी ठोकर इस प्रकार होगी लगी कि तू सिंगर की असू मत बनदा कदी भी और तू सिंगिंग मत करदा कदी भी, लेकिन ये प्रयास रथ हिन और विड़ी गुंजन हमेशा ऐसे प्रयास रथ जो इंदे युवा तिन्यो हमेशा चांस दिंदा हा कि असो माइक जो कि कम्युनिटी रेडिया माइक अगो बहन और अपना कॉन्फिडेंस की सो तस हिसाब रह गया सो लेकर इन और हमेशा पुशअप किया सो रेडियो गुंजन करता ही करता हा। बहरहाल इंदे श्रोतागण असू के कनेक्टेड हिन। नमस्ते जी।
2: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते।
2: और ठीक ठाक ने सर जी?
1: बहुत बढ़िया जी। तो बल्ले तो ठीक ठाक। आज आवाज बड़ी खिली करी छू कर दिया।
2: जी सर जी।
1: जी है ठीक ठाक ने? तो बल्ले तो ठीक ने?
2: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
1: अच्छा करे लुगरीन जी?
2: कुछ नहीं बस तो हम प्रोग्राम सुना दे सर जी।
1: अच्छा
2: हाँ जी सर जी
1: ठीक है जी। कुंदन गीत तो होना पसंद कर ले जनाब?
2: एक गाना सुनाई नहीं हो सतीश कुमार दी आवाज में गाना चल बखता मेरी मिश्ता।
1: अच्छा तुंदा है
2: जी।
1: चलिए जी ता ये तो सिंगर है सोगी बेखुरे ना सोगी। हेलो। ओहो एक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है और सतीश जी तुंदा ही तुंदे ही गौरा किया। हाँ सो चले आ गई जी। क्या बात है ता श्रोतों ये फरमाइश की सो पूरी कर लेंदे ना है और तथों बाद रूबरू बुंदन तू सब योगे है ना। सतीश जी कैसे लगो कि तुंदा ये गीत किया सो चलिया?
0: बहुत बढ़िया सर। मेरी फरमाइश करेगी तारी। बड़ा अच्छा लगो रंदा
1: चल भक्ता मणि मेशा चल है ना जी। चलिए शो तो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और सतीश जी रघुरा गीत है ज़रूर हूँ ले श्रोतों। लेकिन तत्वों पहले गया सो मेरी लाड़ी प्रवीण कुमार पठानी री आवाज़ में हूँ देने गीत बनी रही है तो ये सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিগঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বিয়ে টিউন কর রোর কার্যক্রম এস ওক্ত ইন দিয়ে আপনি গপ্পা গান সো চল রিন তুন দেশে বিরে রেডিও সেট মা তো সব শ্রোতা জরুর জুড়ি সকদেন শত 7018117009 পর নম্বর আক মোকে ফেরে 7018117009 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी असो की साझा कर सकते हैं। बहरहाल श्रोतों कार्यक्रम जो है वो बढ़ते हैं और फेसबुक के माध्यम तो भी लाइव चली देन इन्हें बहना है ना तो सतीश जी जिंदगी में कि असो बहुत सारी चीज़ें असो सीखने जो मुल दिन जी जी दे उम्र की असो बुंदे गंदे है ना।
1: हाँ जी सर।
0: तो तू है ये दसा कि तू संगीत री रुचि किया कस पर्सन जो एर करे लगो कि मुंजो किया सो या घर थो ये लगो कि घरे कोई गुनगुनंदत हो दादे दादा या एनीवन कोई भी गुनगुनंदत हो या फिर तू कस एर करे लगो घर फैमिली थो कितना करे सपोर्ट थो म्यूजिक जो ले करे
1: एक्चुअली घर वाला तो कोई ना गंदा आमी बचपन कोई शौक थू ही ना जी कोई भी ना बनता बचपन शौक थू बचपन होना थू एक्चुअली ए एक्चुअली लोग करी उतनी प्रेरित पुछ करी ते जी जिंदगी जड़ा धक्के लगे ते तेरी के जड़ा मुंजो प्रेरित हुआ कि थोड़ा अगे बढ़ना जिंदा ता करके अगे मैं कोशिश करी जने आज दा मुंजो अली फर्स्ट टाइम याद आ मैं पहला गाना कड्डू पहले एल्बम बंगड़ी चा तने उंजो लोग बनने लगे सब कम करे अड्डे न अब आके एक काम रही हुआ करने जो तो सो गल मुंजो खाए कि मैं स्ट्रगल करने करने तो अब सो लोग जने मुलने ना तो इज्जत दिन दे मान दिन दे न कि बड़े बढ़िया करूँ ना अगले एल्बम कने कड़ने हैं तो ये उन राखी जिंदगी चलो जितना करूँ अच्छा कुछ खरा ही बोलू लोग कह बुरा ही बोलू पर आस पुरवा ना से अपनी जिंदगी लोग करा सू कह लेना देना
0: लोगों तो क्या लेने देना और चलिए कि तो है अपनी ज़िंदगी में कि सो स्ट्रगल करूँ करते हर कोई अपनी ज़िंदगी में शोतों स्ट्रगल करूँ करता है चाहे सो आऊँ आ चाहे सो कोई और आ चाहे सो सतीश कुमार इन हर किसी भी ज़िंदगी में अपने अपने लेवल रहा अपने अपने हिस्से रहा स्ट्रगल किया सो सब भी वहाँ आया है ना। तो सतीश जी तो दसो करते हैं कि ज़िंदगी में बड़े धक्के लगे ऐसे क्या धक्के लगे गए ज़िंदगी में कि क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा अपना ज़िंदगी का क्या तजुर्बा तुम्हारा ज़िंदगी का
1: तजुर्बा तो सर स्ट्रगल बड़ा करूँ धक्के बड़े लगे एक्चुअली लोग खरा कमानता में जिना दिन दे बुरा कमानता में पहले जने एल्बम कटी तने तो मुझे कैसे सपोर्ट ना घर वाले रे फुल सपोर्ट आ फुल बलने ठीक है बढ़िया करूँ ना बच्चा तो जिंदगी स्ट्रगल बड़ा करूँ एक्चुअली हल्की उम्री

0: बैब कर लियो।
1: अच्छा क्या बात है,
0: ठीक है करिए सोक हुंदे मैं बच्चे ठीक है कमाऊ करन दे थोड़ा मतलब बैब इतर भी बढ़िया जॉब थी सब कुछ फिर भी बह करने हो बाद भी घर वाली जड़ी साल भर रहे
1: अच्छा
0: तभी माँ जड़े यहाँ सो चले गए प्यो क्या थू चंडीगढ़ एक्चुअली रात ही चले गए तभी बाद फोन घर वाले फोन करूँगी वो अच्छी हुआ कहना मैं एक्चुअली डी धर्मशाला पुलिस कंप्लेट करी कहना वह 5 साल पूछ गए कोर्ट केस चल रहा फिर भी थोड़ा थोड़ा धक्का खाने बाद अगे बढ़ू करन दा
1: इस फील्ड में अगर चुके थे।
0: जी जी तभी बाद मैं जो गया कि बड़ा भयानक हादसा हुआ
1: अच्छा
0: एक्चुअली मेरा वो एक्सीडेंट कने एक्सीडेंट हो बाद थोड़ा हुआ कि जी महीना भर आऊँ कौम है मस्त हूँ तभी बाद महीने बाद आ उस तब मैं थोड़े दिन जरा एल्बम वगैरह गाना छड़ी दी तुरी ही इस टाइम भी आऊँ थोड़ा अपंग भी छूरा मतलब पर फिर भी आऊँ कोशिश सही करूँ करन दा कि बंदे से शक्ति होता अगे बढ़ने कह कुछ ना कर सकता बंदा
1: क्या बात है, क्या बात है। और वाकई में अगर किसकी किसकी भी व्यक्ति भी ज़िंदगी में सोता हूँ इस प्रकार री इस प्रकार रा तूफान चली है तो सो व्यक्ति की सो डगमगाई ज़रूर गंदा हा। इन्हें दसो कि एक्सीडेंट भी हुआ और एक्सीडेंट में कि सो ये यार याक बाजो ये रुकर दा कि ना अच्छी तरीक़ों की वर्क कर दे हा अकलाते यार अच्छी तरीक़ों की काम किए सो ना कर दे। और महज यारी उम्र जो आफ्टर पहले इंटरव्यू थो पहले गल हुई थी तो महज यारी उम्र की सो 29 साल है ना जी सतीश जी,
0: जी जी
1: 29 साल उम्र है तुंदी और आई थिंक 24 साल रहा कि कितने,
0: हाँ जी हाँ जी 24 साल थे
1: 24 साल रहा आशो तो इन्हें बह करी ली उत और तथों बाद बह तो बाद बल्द ने कि जिंदगी की ऐसो मतलब चलो कुछ भी यारी लाइफ में बुआ कुछ भी बच्चू करता या कुछ भी बुआ सो चलो यारी पर्सनल लाइफ है लेकिन फिर भी अगर साथ मुड़ेगछा था जिंदगी और भी ज़्यादा हसीन की सो बच गंदे आ परिवार रा साथ बुना बहुत ज़रूरी है अर्धांगनी रा साथ बुना की सो बहुत ज़रूरी है लड़ाई झगड़े की ऐसो हमेशा आऊँ था अक्सर अपने लाइफ में बोलता कि लड़ाई झगड़े की ऐसो किसी भी घर जो बसना ना दें दे हमेशा की ऐसो घर उजाड़ी करे लड़ाई झगड़े के सो मन मार दहन सो बोल देना कि अख चुप तो सो सुख सो सियाने ही ना बोल रहा कि तो है इस जहर रो घुट पी ले ले ता बस ही गया और ना पी सके तो फिर ही उजड़ गया और लाइफ बर्बाद बंदे की ऐसा टाइम ना लगता है। तथों बाद भी कोई शख्स की ऐसा अपनी म्यूजिक जो लेकर ही मतलब इतना रूबरू हा इतना रूबरू हा इतना प्यासा हा अपने संगीत जो लेकर ही मतलब हेड्स ऑफ हा और सचमा सतीश जी तो उसको सच में सल्यूट है कि इतना कुछ लाइफ में बच्ची को इतनी लाइफ डगमगाई गई तथों बाद भी तो है गया सो म्यूज़िक माँ के अपनी रुचि रखू कर देन और एल्बम कड्डू कर देन और शो तो एक एल्बम कटने हो मैक्सिमम घट तो घट भी तो है 25-30-35 हज़ार भी है खर्चा किया सो मन नहीं करी चला कि इतना करी खर्चा किया सो अक गाना कटने में क्या सो चली इंदा और यार जॉब अच्छी है चलो जॉब इंजा दस की जॉब भी अच्छी है लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो हा हर किसी भी लाइफ में। चलिए सतीश जी तुंद गौरा ये गीता चल भक्ता मणि महेश और ये फरमाइश भी ऐसा हुआ या तो इस गीता जो है सब होने लेते हैं बने रहे शो तो वेड़ी गुंजन रेसी गूंज सो।

0: श्रोत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेंसो चल रही था। बहुत बहुत स्वागत है मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोता रहा और हार्दिक अभिनंदन है जनाब। तो सब श्रोता सो के जुड़े सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिर शेयर करना हाँ 708-8-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं। सतीश कुमार सो की बिल्कुल लाइव उपस्थित हैं तो है रूव कर देना फेसबुक के माध्यम तो और रेडियो के माध्यम तो बरहाल इन अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बल्लू दिन। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी वेड़ी गुंजन मां स्वागत है।
1: सचिन भाई नमस्कार। अशोक एवं हम क्रेरी हूं
0: ना। अच्छा अशोक जी स्वागत है तुम्हारा ठीक ठाक ना।
1: धन्यवाद सर धन्यवाद। हां जी बढ़िया तू सुनाओ।
0: बहुत बढ़िया अशोक जी। अशोक जी क्या बात है तो है भी क्रेरी रे ना और इंदे जो आजकने गदियाली फोक सिंगर हिन सतीश कुमार सो भी क्रेरी थो इन। हाँ जी
1: बड़ा अच्छा गांधर। अच्छा मैं सर प्लीज भाई अपने आप लाल तेरा स्टाफ का पिछली बार फरमाई से फरमाई था पति मस्त आ गया ना रेखा रेखा रूप।
0: अच्छा तुमने ना आवाज मुझे लगता करे रही था चलो हाई थोड़ी करी प्रॉब्लम आई नेटवर्क रे बरखा भी बड़ी ज्यादा बुने और बड़ा अच्छा एरिया बड़ा प्यारा इलाका बिल्कुल मतलब पहाड़ रे समीप न तो है जी पहाड़ अंदर ही तो है लेकिन थोड़ी घर सिग्नल रे दिक्कत की है सो इच्छु कर दिया ता तुसु लाल तेरा साफा वो भोरा
1: लाल तेरा साफा स्पीज स्पीज भाई दे वाद्य में सुनना सने एक परवीन भाई दे गाना परवीन हंस का रेखा और रेखा।
0: अच्छा भाई ए फरमाइश आकी पूरी बोने या तो तू है परवीन भाई री आवाज में हुन लिया या तू है सतीश भाई री आवाज में हुन लिया अक पर्सन रे आकी फरमाइश पूरे हुंदे है ना जी
1: रेखा और रेखा सुनाएगा
0: परवीन जी रा रेखा और रेखा हुन ना तुसु ठीक है। श्रोताओं अन्य इंद श्रोता भी असू की कनेक्ट बच्चू कर देती है तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं तो है 708-8-8-709 पर नंबर आक मौके फिर हूँ रिपीट कर लूँ और सतीश जी रे एरा बड़ी स्टोरी की असो थोड़ा करे असू बड़ा कुछ सिखाऊ करते हैं श्रोताओं हल्की उम्री में बह करने बाद है ना इंसान की सो बड़ी चीज़ा सीखता बया बैठों बाद आखिरकार इंसान सच में बड़ी चीज़ा की सो सीखता है लेकिन मुझे लगता कि एज बड़ी मैटर करती है बह की सो मतलब तो है तस उम्री में करा जस उम्री में कि सो दोनों पक्ष के नसो कि दूए अच्छी तरीक़ों की अंडरस्टैंड कर सकना है ना माता पिता जो अंडरस्टैंड कर सकना कचों की ये चीज़ा तो मायने रख दी इन शोतों कि तो है तस उम्री में वह कर सकते हैं जस उम्री में तो है त्या अपने दब्बूरे माता पिता जो भी समझी सकने त्यारी अपेक्षाएं क्या सो भी समझी सकना है ना और त्यारे के रुझान तुंदे प्रति सो भी तो है बाखूबी की सो समझी सकना। बहरहाल सतीश जी असू की जुड़न सतीश जी चलिए ये दसा कि पहले तो ये दसा कि कदे लगो है पहली बार इंटरव्यू करो तो है रेडियो मंच कदे कदे लगो
2: तो चल थोड़ा नर्वस तो हुंदे पर आप इंटरव्यू देना दा फिर ही टीच के जरा डर अपने आप अटेन दा और तुम दसो फिर शुरुआत है कृपा।
0: अच्छा
2: बहुत अच्छा लगुरंदा
0: चलिए तो सतीश जी क्या हृदय अपने आप जो कड़ी लेकर गाने चाहते हैं और कितना ज़्यादा और संघर्ष के सो करना चाहते हैं जिंदगी में और क्या चाहता है कि आऊँ फलाने हैं बनी गच्छू बस इतनी करी मेरी इच्छा।
2: संघर्ष तो ऐसा करो ही करना जिंदगी एक्चुअली है कि जीवन साथी है साथ नहीं दिता था मैं साथ सुनू जड़ा साथ में इंजॉय भी छुन सो म्यूजिक का जड़ा मैं मैं संगीत चुनू आता मेरा साथ परिवार का साथ है म्यूजिक मेरा साथ था इन भगवान ने दाइया सब ओके है जितने बने ठीक है पर अगे ऐसा स्ट्रगल करता रहो करता है अगर तू तो सपोर्ट कर लै सू अगे भी नोए नोए तू पहाड़े गाने जड़ा है तो

0: नासे।
1: अच्छा तो सतीश जी ये दसा कि चंडीगढ़ री लाइफ कद लगते दसो हिमाचल में और अपने घर है करेरी कहने कहने इन दिन तो है।
0: एक्चुअली करेरी दा बड़ा घाट आवे भी कोई 5 महीने बाद आ, और अपना हिमाचल अपने अपने ग्रां पर। एक्चुअली चंडीगढ़ वे कि 10 साल हो गए तो तड़ी भी सब अपना ही लगता, अपना भाईचारा सब ओके तड़ी भी। पर ये कि थोड़े ना गर्मी का मौसम तड़ी आवे तो आदत पे गया 10 साल रही घरे, पर जी एड़ी च रहना था अक लगे सुकून मिलता अपने हिमाचल च घरे। जी।
1: अच्छा चलिए जी हिमाचल में तो वाकई में ही अलग ही सुकून मिलता है तो तुम्हें बड़ा ही ठीक हो सही गल बल्ले हाँ। तो चलिए प्रवीण हंस रा गुरु है गीता रेखा हो रेखा है ना जी तेरी फरमाइश करे करेरी थो तो ज़रूर है पूरा कर ले से गीता जो भी चलिए चलते हैं। और सतीश जी ये दसा कि नेक्स्ट फर्दर प्लान किए तुंदा म्यूजिक जो ले करे किस प्रकार हो गए गया सो और भी ज़्यादा तो है नाटी तो सो गया सो नाटी और भी गया सो कटनीन कितने करी तो है और गीत के सो कटने रे अपेक्षा रख देन और कितने करी तो है आज दिन तक स्टेज करे इन कड़ी कड़ी की है सो तो है स्टेज करे और पहली बार जाने तो है स्टेज करो तो था कदे कदे लगो तो डर कदे लगो तो
0: एक्चुअली जने कोई फर्स्ट टाइम कम करना डर तो होंगे आ, पहला स्टेज में करूँ चुबाड़ी तदियों बाद में करूँ धर्मशाला। बाकी दस जिया अलग अलग नुआला जगरन वगैरह करता रहता तो नुआला जगराना सिस्टम हूँ और तदियों हमें टीम माते कहीं सिंगल गाने पिछों बंदे जो स्टेज पर खेल है तो माती जनता होंगे थोड़े डर तो लगता, पर ये होंगे कि जहाँ तक गाय करी उतरना ना स्टेजों तो डर थोड़ा लगे रहा, पर जहाँ गाय करी चली ताली पी लोग पता कि अपना बेस्ट दिता अस है जो तुंदा लोग करा प्यार आ सो करते इतनी हो हिम्मत इंदे आ।
1: वाकई में इन्हें शोतों की ये वाकई में बड़ी अच्छी गल बोले कि
2: हेलो
1: जो कलाकार बंदा सेरी वाकई में जो बड़े अच्छे बड़ा अच्छा शब्द इंजा गद्दी रे बोलो कि हिम्मत हिम्मत की असो ताली दिंदी हिन है ना हिम्मत की असो ताली ही दिंदी हिन हौसला किया सो ताली ही उपजाई कर दी न ताली ही बजाई करके हो सो हौसला उपजाए बंदा हा बरहाल इंदे श्रोतागण असो की कनेक्टेड हिन नमस्ते जी हेलो
2: बोला
1: हेलो नमस्कार
2: हेलो
1: जी वेरी गुंजर मां स्वागत है हेलो
2: नमस्ते हेलो
1: हाँ जी नमस्ते जी वेरी गुंजन माँ स्वागत है
2: जी
1: जी
2: हाँ जी काकी बेटी
1: कौन बोल
2: बोल
1: लूंदर।
2: रही है हेलो
1: हाँ जी
2: काकी
1: जी जनाब
2: नदी आजा बैठ
1: माफ़ कर रहे तो मुझे लगुंदा क्योंकि यार और इनकी आवाज़ की ऐसा कनेक्ट ना बचू करते थे और कभी कभी बंदा ना मेल ना बंदा इंसान रहा सो इस इंडिया कॉल रहो गेंद आए हुआ तो कि मेल की ऐसा ना बुआ। चलिए अगले श्रोता बे कनेक्टेड हिन आई थिंक या
2: नमस्ते
1: फिर सो ही कॉल करो कर दे। नमस्ते जी
2: जी जैसी
1: जी कौन बलुंदन
2: नदी
1: कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन।
2: जैसी नदी की बुआ
1: हाँ जी
2: जैसी नदी की बुआ जैसी
1: जनाब कौन बलुंदन और कड़ी थो बलुंदन है पूछो। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो फिर थोड़ा करे हगू बढ़न दे हिन और सतीश जी समय के असो भूना लग रहा है और लाल तेरा सापा इन बल्लू तो की तुंदी आवाज़ में हुनना हा सो जरूर इन होना है
0: जी
1: चलो
0: जी दो लाइन में होने फिर यार फरमाइश थे।

0: बूंदी। धन्यवाद।
1: चलिए जी, कार्यक्रम जो थोड़ा करियो और आगू बढ़न दहिन, और कार्यक्रम में अवे तू सब भी जो लेकर चल दे श्रोताओं, ऐसा प्रवीण हंस रा गौरा गीत तुंदे सभी रेडियो सेट में।

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সব টিউন কর রো আর কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গান সো চল রি इन लेकिन अब असो समाप्त किन्सु करना पैनी क्या जो कि समय की असो बुझे को इजाजत लेने रा तगंद गंद सतीश कुमार जी जी के मैं दसो शो तो इंदे गदयाली लोक गायक हैं और प्रयास करू कर दिन प्रयासरत हैं इस फील्ड में इस लोक गायकी में और स्टेज भी कर दिन नुआले भी गुनगुनन दिन जगराते भी गुनगुनन दे हैं और छोटे मोटे प्रयास इस प्रकार रहे इनसो करू कर दे हैं अपनी गायकी जो सुधार करने वास्ते अपनी गायकी जो और ज़्यादा बेहतरीन बनाने वास्ते ता सतीश कुमार जी गंदे गंदे जितने भी लक्ष्य होता है इस समय तो सो हुणु कर देन क्या तियां बोलना चाहते हैं कि तुंदे प्रति क्या तियारा प्यार रिया क्या तियारा समर्थन रिया तुसु वास्ते
1: तुंदा सब नीरा ता नेवाद मंजो के जुड़े बड़ा अच्छा लगुआ और तू सही है अपना प्यार दिंदा रहे अगर गाने अच्छे लगंदे तो हुणे और असु दस सके इंदा प्रयास किन्ना तुसु वास्ते और असु नवे नवे गाने लेकर ईणे और मेरा चैनल है ना सतीश कुमार गद्दी ऑफिशियल इसे वो सर्च मार कर जितने मेरा चार पांच गाने न सो तुस वो चलीने न कने चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जाने भी अगे तुस वो और गाने इन्हें तुस नोटिफिकेशन इंदे रहनी और अल्ली मेरा जरा त्राई प्रोजेक्ट न सो इन्हें आने न अगते पहले एक्चुअली साल बाद लाई शुरुआत करना था पहले बन्नी माता अपने कुल देवियों करने बजना हूँ तथियों बाद सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग जड़ा मेरी लाइफ और बितरुआ जड़ा चल रहा तो सुबह दसो कि जियाँ जीवन साथी छड़ी गई कि चलू कोर्ट कचहरी दसो तेरे थ्रू कुछ गाना बनूरा में तो बड़ी जल्दी तो सो जियाँ चलीने तुंदे नजर के अगले जड़ा प्रोजेक्ट न मेरे इन्हें आल है तो जी टाइम लगता तेने मूह रिलीज करी देने तो अपना प्यार इं बनाई रखा
0: चले शो तो इं फरियाद करिए और फरियाद पूरी करना कि असो जनता वे हाथ बुंदे है जनता जनार्दन है तो चलिए इस फरियाद जो तो है मंजूर के असो जरूर करन कजो कि सतीश कुमार के असो बहुत ही स्ट्रगल फेस तो गुजरू करता है शो तो और अज कि दसो भी कर दिन कि जीवन साथी की असो साथ छड़ी के क्या कारण कहने सो तो चलो इं पता है लेकिन जड़ तक मैं इं पहले भी गलबात करी थी तो थोड़ा करे चलो एक तरफा है बिल्कुल भी ना बल्ले सकदन कि सतीश जी ठीक नहीं असो ठीक नहीं लेकिन चलिए संघर्ष करू कर दिन इस फील्ड में और बस ये बोलना चाहूँ कि तू है यारे गीता जो किया सो जरूर प्यार दिन और सब्सक्राइब करनी यारे चैनल जो और इन अपना आशीर्वाद जरूर दिन और ना चीज सचिन कपूर ले लेनो इजाजत 6 बजे फिर मिल दिन गुड इवनिंग धर्मशाला मंच तीन तक रहे हंसते रहे मुस्कुरा रहे और रेडियो गुंजन जो यहीं हो रहे नमस्ते धर्मशाला।

0: ऑडियो जंप।
1: नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। 5 किलोमीटर से बाहर काम तो 10% अतिरिक्त मजदूरी। एम्स बिलासपुर में पहली सफल विफल सर्जरी, कैंसर मरीजों को राहत। भारत जापान साथ बनाएंगे सैन्य उपकरण। प्रदेश में 1000 निजी बसों में मिलेगी सस्ती यात्रा की सुविधा। 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लॉन्च होगा देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1। अब समाचार विस्तार से।

0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसे निदान सेवाओं में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि इससे मरीजों को समय पर और बिना किसी असुविधा के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश सरकार आवश्यक श्रम शक्ति और आधुनिक निदान उपकरण उपलब्ध करवा रही है तथा विभाग को इन आवश्यक सेवाओं में प्रतीक्षा समय समाप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय IGMC शिमला तथा चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों से निदान सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने तथा मरीजों के लिए शून्य प्रतीक्षा समय के लक्ष्य को साकार करने के लिए सुझाव और सहयोग भी मांगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही 21,000 रूपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत जी राम जी योजना में पहाड़ी राज्य की जरूरतों के अनुसार पारंपरिक कुल और प्राकृतिक जल स्रोत चश्मों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। योजना की कैटेगरी 1 के तहत हिमाचल की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा। योजना के तहत 5 किलोमीटर से बाहर काम मिलने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान किया गया है। पीक एग्रीकल्चर सीजन में काम पर रोक का प्रावधान किया गया है। साल में 60 दिनों का ऐसा पीक सीजन अधिसूचित करेगी जिसमें इस योजना के तहत कोई नया काम पहाड़ी क्षेत्रों के पारंपरिक जल संरचनाओं की जीर्णोद्धार को मिलेगी प्राथमिकता नहीं किया जाएगा। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। एम्स बिलासपुर के सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग ने पहली बार पेनक्रियास और पित्त नली के कैंसर से पीड़ित मरीजों की सफलतापूर्वक विफल सर्जरी कर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में पेनक्रियास और पित्त नली के कैंसर के मरीजों के लिए ये राहत भरी खबर है। अब ऐसी जटिल सर्जरी के लिए हर बार प्रदेश से बाहर जाने की मजबूरी कम हो सकती है। पेनक्रियास और पित्त नली के कैंसर का इलाज सबसे जटिल शल्य प्रक्रियाओं में माना जाता है। भारत और जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, धातु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा के लिए संयुक्त रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सैन्य उपकरणों का मिलकर विकास एवं उत्पादन करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री जानाए तकाईची के बीच शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेज 4 के तहत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। 12वीं कक्षा तक के छात्रों को बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी जबकि 12वीं से ऊपर के विद्यार्थियों को 5 रूपए का डे पास मिलेगा। ये सुविधा योजना के तहत खरीदी जाने वाली 1,000 निजी बसों में लागू होगी। डे पास केवल उसी दिन मान्य होगा और रविवार व राजपत्रित अवकाशों पर लागू नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। महिलाओं को प्रत्येक यात्रा पर 50% किराया छूट भी मिलेगी। सरकार पात्र विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए हिम्बस कार्ड जारी करेगी। हैदराबाद को निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इसको विक्रम 1 रॉकेट का पहला परीक्षण प्रक्षेपण 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है। ये भारत का पहला निजी क्षेत्र में विकसित कक्षीय रॉकेट है। हालांकि अंतिम प्रक्षेपण तिथि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट की अंतिम तैयारी, सभी परीक्षण, मौसम, सुरक्षा मंजूरी और लॉन्च रेंज की उपलब्धता के आधार पर तय की जाएगी। कंपनी ने इस मिशन का नाम आगमन रखा है। हिमाचल प्रदेश से पहली बार निर्यात की गई ताजी चेरी और पलम की खेप ओमान पहुंच गई है। ऐसे में राज्य के उत्पादों को विदेश में भेजने से प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में उचित दाम मिलने से किसान बागवानों को लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की वेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेगी। कश्मीर दौरे से लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों की ऑनलाइन इंस्पेक्शन की जाती है, साथ ही वहां दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों के लिए CRC के तहत एक वर्ष की नियुक्ति की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत ये नियुक्ति होती है। वहां विद्या समीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए जिला इकाइयों का गठन किया गया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की कुछ एक प्रैक्टिसेस बहुत ही बेहतर हैं, जिसे प्रदेश में भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशक को डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। प्रदेश के CBSE पैटर्न वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को की रोहित ठाकुर नियुक्ति को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का स्टैंड पूरी तरह से स्पष्ट है और CBSE स्कूलों में भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर ही होगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अनुबंधाधार पर कार्यरत 68 लेक्चरर को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाओं की नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अनुबंधित लेक्चररों ने 30 सितंबर 2024 तक लगातार 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाएं 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी रूप से नियमित की जाएंगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नियमितीकरण के बाद संबंधित शिक्षकों के 43,000 रुपए मूल वेतन दिया जाएगा। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: पलट के।
1: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई, अरे भाई,
0: अरे भाई, निकल के आघर से, आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

0: लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर, जाते ही झुके सलाम बजाया, डैडी को दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया बजाना न

0: तरीकी
1: सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले

91.2 MHz पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: करते हैं।
1: अरे वाले मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

0: हमको
1: भी मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना चाहे हमको दीवाना आज हम।
2: तो श्रोताओं आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ಕಾಯೋ ಕಪ್ಪಕ್ಕ ಓಟಿ

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लगती है मेरी राहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय।

तोबा ये निगाहें मैं की बोतल जैसी बाहें हाय।

0: पर
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, अन्य अन्य अन्य प्यार हो।

0: धीरे मैंने खींचा आहा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा, हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाल आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने घर में खुश होंगे। श्रोताओं, चलिए कहते हैं ना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तेरी एक मुस्कान पर दिल हार बैठा हूँ, तेरी एक मुस्कान पर दिल हार बैठा हूँ, मैं आज भी तुमसे बे इंतहा प्यार कर बैठा हूँ। जी बिल्कुल, और बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी से जो है वो बे इंतहा प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। आप सभी का प्यार और आप सभी का आशीर्वाद इस नाचीज़ पर यूं ही बना रहे, बस यही खुदा से दुआ करता हूँ हर वक्त। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में जैसे कि आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम जानकारियों का पिटारा जो है वो भी खोलते हैं और साथ ही साथ गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी खोलता है। तो सबसे पहले धर्मशाला का मौसम, बहुत सारे श्रोता हमारे इच्छुक रहते हैं धर्मशाला के मौसम को जानने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर जॉब करते हैं, चाहे फिर वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, है ना, तो धर्मशाला को बहुत मिस करते हैं। तो इस समय 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है धर्मशाला का, और बारिश में आपको बताना चाहूँ कोई मतलब बारिश हुई है यहाँ 4:30 के करीब जो है वो धर्मशाला में काफ़ी बारिश हुई है, और पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है वो मौसम ठंडा बना हुआ है, बारिश जो है वो धर्मशाला में हो रही है। और नमी की बात की जाए श्रोताओं, तो नमी इस समय जो है वो 80% के आसपास धर्मशाला में नमी है। मौसम काफ़ी ठंडा है, मौसम काफ़ी सुहाना है। जी बिल्कुल श्रोताओं, और कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। कहते हैं कि तेरे ख्यालों में ही गुजर जाती हैं रातें, तू सामने हो तो ठहर जाती हैं सारी बातें। है ना जी, तो ख्याल ज़रूर लीजिएगा, ख्याल लेना जो है वो बहुत अच्छी बात भी है और बहुत प्यारी बात भी है। तो चलिए, बहुत सी जानकारियां हैं, ये तो मौसम से जुड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, श्रोताओं अन्य जानकारियां भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने बन की और गूंज प्यारे प्यारे श्रोतों की। चलिए सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

चलिए श्रोताओं, आपको भी कोई ना कोई ज़रूर अच्छा ज़रूर लगता होगा। एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। जी बिल्कुल, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी जो है वो ज़रूर देंगे और विस्तार से जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। श्रोताओं, आप सभी बने हुए हैं वीडी गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं श्रोताओं। तो बहुत सारी जानकारियां हैं आप तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो अब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने राज्य के विभिन्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और क्षेत्रीय अस्पतालों में 162 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है श्रोताओं। सरकार के इस निर्णय से राज्य के उन दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा जहाँ पर लंबे समय से डॉक्टरों की कमी खल रही थी। स्वास्थ्य विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर चयनित मेडिकल अधिकारियों को जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर के रूप में जो है वो नियुक्त देने की अधिसूचना जो है वो जारी की है। चयनित डॉक्टरों को 2 वर्ष तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में जो है कार्य करना होगा श्रोताओं। इस दौरान उन्हें प्रति माह 34,000 रुपये का जो है वो 34,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। शुरुआत में नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, नियुक्ति जो है वो 1 वर्ष के लिए होगी श्रोताओं, जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार आगे जारी रखा जाएगा श्रोताओं। इन डॉक्टरों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है। अधिसूचना के मुताबिक जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ता पेंशन और एलटीसी मेडिकल तथा अन्य सेवा लाभ जो है वो नहीं मिलेंगे श्रोताओं। हालांकि सरकारी कार्य से यात्रा करने पर उन्हें नियम अनुसार जो है वो TADA मिलेगा। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइए चलते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और आप सभी तक पहुंचाते हैं ये प्यारा सा गीत। जी बिल्कुल श्रोताओं, दिल का रिश्ता मूवी से लिया गया ये गीत है और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत

बिल्कुल श्रोताओं, दिल का रिश्ता जो है वो बहुत बड़ा ही प्यारा है और बड़ा ही दुलारा है। जी बिल्कुल, आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन के साथ और मैं हूँ सचिन कपूर आप सभी के साथ। चलिए, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो चलिए, थोड़ा सा सिग्नल का दिक्कत जो है वो हो रही है। दिक्कत तो लाइफ में भी बहुत सी होती हैं श्रोता, है ना। तो लाइफ हम जीना थोड़ी ना छोड़ देते हैं, इसलिए हम फेसबुक के माध्यम से लाइव कर रहे हैं, तो लाइव करना थोड़ी ना छोड़ देंगे, लाइफ तो यूं ही चलता रहेगा। चलिए, जानकारियों का पिटारा जो है वो भी खोलते चलते हैं श्रोताओं। हर परिवार को मिलेगा 125 दिन के रोजगार की गारंटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही खबर आप सुन पा रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास को नई रफ्तार देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत हिमाचल प्रदेश विकसित भारत गारंटी रोजगार और जीविका मिशन ग्रामीण योजना 2026 को आधिकारिक तौर पर जो है वो अधिसूचित कर दिया है। जी बिल्कुल श्रोताओं, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पोलराम द्वारा पोल वासु द्वारा जो है वो जारी इस अधिसूचना के अनुसार ये योजना 1 जुलाई से जो है वो पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पूरी तरह लागू हो गई है, हो चुकी है। योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में जो है वो कम से कम 125 दिन जो है वो सुनिश्चित किए गए हैं कि 125 दिन रोजगार जो है वो प्रदान किया जाएगा। यदि किसी आवेदक को काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता तो वह बेरोजगार भत्ता पाने का हकदार होगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, यह भत्ता पहले 30 दिनों के लिए तय मजदूरी का 1/4 25% और शेष अवधि के लिए आधा 50% होगा। श्रोताओं, श्रमिकों को उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही जो है वो काम देने का प्रयास किया जाएगा। कठिन पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि काम 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर हुआ लेकिन ब्लॉक के भीतर दिया जाता है तो परिवहन और अतिरिक्त खर्चे के लिए जो है वो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। श्रोतों, मास्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर श्रमिकों के बैंक खातों में सीधा भुगतान किया जाएगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो वह 16वें दिन से 0.05% प्रतिदिन की दर से देरी का मुआवजा उन्हें मिलेगा। श्रोतों, इस योजना में किसी भी स्तर पर ठेकेदारों की सेवाएं लेने पर पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दी गई है सरकार द्वारा। अब सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। इसी प्रकार से अन्य जानकारियां हम आप तक साझा करते रहेंगे, इसी प्रकार से जानकारियों का पिटारा जो है वो आपके समक्ष रखते रहेंगे। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजी वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी का, सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो चलिए, जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के स्कूलों की भी होगी अब ऑनलाइन इंस्पेक्शन। जी बिल्कुल, ऑनलाइन इंस्पेक्शन जो है वो अब होगी। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं श्रोताओं। हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के बेस्ट प्रैक्टिस को जो है वो इन्हेंस कर रही है। कश्मीर दौरे से लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूलों की ऑनलाइन इंस्पेक्शन की जाती है, साथ ही वहां दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों के लिए जो है वो सीआरसी के तहत एक वर्ष की नियुक्ति की जाती है। जी बिल्कुल श्रोताओं, और 150 सीबीएसई स्कूलों में जल्द प्रधानाचार्य को मिलेगी नियुक्ति। श्रोताओं, 1600 स्कूलों में बढ़ेगी इंटरनेट की पावर और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो रखे जाएंगे अतिरिक्त शिक्षक। बिल्कुल, और अन्य जानकारियों का पिटारा तो यूं ही खुलता रहेगा श्रोताओं, जानकारियां तो यूं ही चलती रहेंगी आप सभी के रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को थोड़ा सा और आगे। और पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सभी, ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही रहने चाहिए श्रोताओं। और देखिए, हादसा जो है वो कभी भी हो सकता है। फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बस की ब्रेक फेल, खाई में गिरने से बची बाल बाल। ढलियारे की खूनी मोड़ पर पेश आया हादसा श्रोताओं। श्रद्धालुओं से भरी थी बस, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा श्रोताओं। धर्मशाला बीडीसी में भी जो है वो भाजपा का कब्जा। श्रोताओं, पंचायती समिति के आलोक अध्यक्ष और सरोज कुमारी चुनी गई उपाध्यक्ष। ये पूरी जानकारी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं की। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। वाकई में ही बहुत प्यारा सा गीत है और डोला रे मंडोला दिल डोला, देवदास मूवी से लिया गया ये गीत है। कविता किशन मूर्ति और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे।

शत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निर्देशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। श्रोतों, साथ ही 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। श्रोतों, बैठक के दौरान निर्देशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिनों का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबद्ध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। श्रोतों, निर्देशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी जो है वो स्वीकृति प्रदान की। श्रोतों, ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। श्रोतों, और प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया गया है। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने रेडियो सेट पर। चलिए जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आप सभी को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेली गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं जनाब आप सभी। कार्यक्रम का नाम आप सभी बाखूबी जानते हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं नाचीज सचिन कपूर इस समय इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहा हूँ। श्रोतो कहते हैं ना कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, और कहते हैं कि ठोकरें जो है ना वो बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, ठोकरें जो है वो बहुत ज्ञान देकर जाती है, और कहते हैं कि असली ज्ञान जो है ना वो बादाम खाकर नहीं जनाब, ज़िंदगी की ठोकरें खाकर जो है वो असली ज्ञान आता है। इस बात से आप कितने लोग सहमत है कि ज़िंदगी का जो ज्ञान है वो ठोकरें खाकर आता है, बादाम खाकर नहीं आता है? तो चलिए फ़िलहाल हम आपको लेके चलेंगे श्रोताओं एक और जानकारी की ओर, आप तक साझा करेंगे एक और जानकारी। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना पेज चार के तहत जो है वो विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। 12वीं कक्षा तक के छात्रों को बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी श्रोताओं, जबकि 10वीं और 12वीं के ऊपर के विद्यार्थियों को ₹5 का डे पास जो है वो मिलेगा। ये सुविधा योजना के तहत खरीदी जाने वाली 1000 निजी बसों में लागू होगी। जी बिल्कुल, डे पास केवल उसी दिन मान्य होगा और रविवार व जिस दिन छुट्टी होगी कॉलेज या स्कूल में उस दिन लागू नहीं होगा। विद्यार्थियों को वैध पहचान, जो विद्यार्थियों की पहचान है, असली पहचान है, वह पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है, चाहे वो आपका आपका कॉलेज का आइडेंटी कार्ड हो गया, चाहे स्कूल का आइडेंटी कार्ड हो गया, चाहे आपका अपना आधार कार्ड हो गया, इस तरह का पहचान पत्र है वो दिखाना आपको अनिवार्य होगा। महिलाओं को प्रत्येक यात्रा पर 50% किराया छूट भी मिलेगी। सरकार पात्र विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड जारी करेगी श्रोताओं। तो यह है सूचना जो हमने आप तक पहुंचाई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत विद्यार्थियों को ये बड़ी राहत दी है श्रोताओं। आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की इसी गूंज के साथ, यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो गुंजन, और इस नाचीज को भी यूं ही सुनते रहिए। आएंगे फिर फेसबुक के माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर से मिलेंगे कुछ एक और जानकारियाँ लेकर आपके बीच में। तब तक श्रोताओं

शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो अब वक्त हुआ है समाचारों का, तो कुछ ही देर में समाचार जो है वो रिले किए जाएंगे रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूँ ही बने रहिएगा, जुड़े रहेगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ।

विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? फिर से उम्मीद यही है कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में जो है वो अच्छे होंगे। श्रोतों तो आइए कुछ एक और मौसम से रिलेटेड जानकारी है जो आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन इस छोटे से गीत के बाद।

श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपका अपना नाची सचिन कपूर, हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। तो चलिए जी, अन्य बहुत सी जानकारियाँ हैं जो हमने आप तक साझा करनी है। तो जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मॉनसून ने एंट्री ले ली है, इस बात से हम सभी काफ़ी ज़्यादा रूबरू हैं। और देखिए, पहले ही दिन मैंने बताया था कि कम से कम 8 हिमाचल प्रदेश में जो है वो 6 से 8 के करीब जो है वो मौतें हुई हैं मॉनसून की एंट्री पर ही, है ना। तो पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और जानकारी से पहले आप तक, आप सभी श्रोताओं तक, जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नदी नालों की साइड ना जाएँ, यात्रा जो है वो कम कर दें, अगर बहुत ज़रूरी है तभी जो है वो घर से बाहर निकलें या घर से यहाँ वहाँ जाएं। चलिए, ड्यूटीज़ तो अपनी अपनी हमने करनी है जैसे न तैसे, लेकिन अगर बहुत बारिश है तो एक जगह थम जाएं, बहुत बिजली कड़क रही है तो एक जगह थम जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो मानसून ने एंट्री कर दी है। श्रोताओं, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है इस समय। श्रोताओं, मौसम विभाग ने राज्य में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। विभाग के अनुसार 3 से 6 जुलाई तक कई ज़िलों में जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर जो है वो ऑरेंज अलर्ट रहेगा और जारी किया गया है श्रोताओं, जबकि 7 और 8 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रोताओं, मौसम विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में नदी नालों और खड्डों के किनारे जाने से बचने तथा खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा ना करने की अपील की है। यानी कि जब खराब मौसम हो तो ना यात्रा आप करें, ना जाएं यहाँ से वहाँ जो है वो ट्रैवल ना करें। और मौसम विभाग ने ये अपील की है कि जहाँ आपको पता है कि ये लैंडस्लाइड एरिया है उस साइड भी जो है वो ना जाएं, लैंडस्लाइड एरिया की साइड भी ना जाएं। और हम सभी बाखूबी जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है, हमारा कांगड़ा, हमारा धर्मशाला जो है वो जोन 5 में है, तो हमें ज़्यादा खतरा है भूकंप से भी, है ना। तो चलिए, जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही है उस साइड भी ना जाएं, और साथ ही साथ जो है वो नदी नालों के किनारे भी ना जाएं, और ना ही ये सोचें कि अभी गर्मी है, अभी धूप है, हम ये जो हमारी बड़ी प्यारी प्यारी खड्डे हैं जो धर्मशाला में हैं, चाहे वो मौली खड्ड है, चाहे अगंजर महादेव वाली खड्ड है, चाहे वो और कितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना, वहाँ पर हम जाते हैं, नहा लेते हैं, और जब मौसम ख़राब होगा, मौसम ठंडा होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पर जल स्तर जो है वो किस समय बढ़ जाए, धूप में भी बढ़ जाता है, ये हमने बहुत बार देखा है। तो इस बात से हम सभी बाखूबी रूबरू हैं कि धूप में भी जल स्तर जो है वो इन नालों का बढ़ जाता है। तो विशेष ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी को अब संभाल कर जो है वो ज़रूर रखे। श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय इस नाचीज़ के साथ, नाचीज़ का नाम है सचिन कपूर, सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, यूं ही लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

बहुत प्यारा सा गीत, बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। वेड़ी गुंजन धर्मशाला में अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ, वाकई मैं नशतों किसे नींद है और किसे चैन है। चलिए ये तो वक्त ही बताता है कि किसे नींद है और किसे चैन है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़िंदगी में चैन होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मैं हमेशा कहता हूँ कि मानसिक तनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। पैसा बेशक कम होना श्रोताओं, लेकिन लाइफ में जो है वो सुकून होना जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून में रहना जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है श्रोताओं, और अगर आप सुकून में हैं, अगर आप प्यारी से मतलब ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, जहाँ पर आपको प्यार मिलता है, तो आप बहुत खुश हैं। जहाँ पर आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपके परिवार के सदस्य आपके साथ हैं, आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल बेहतरीन चल रही है, आपके पास पैसा है, और मतलब उतना तो नहीं, उतना सा पैसा जो है वो ज़रूर होना चाहिए लाइफ में श्रोताओं की आपकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए, है ना। इतना सा पैसा जो है वो ज़रूर होना चाहिए लाइफ में। बहरहाल आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और छोटे से अंतराल का जो समय है वो भी होता जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आप तक पहुँचाते हैं श्रोतों। नूरपुर पुलिस ने जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार से 10.18 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद कर पठानकोट निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में जो ये व्यक्ति मिला है मोटरसाइकिल भी इसकी जब्त कर ली है श्रोतों। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया है कि नूरपुर की टीम नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कंडवाल मुख्य प्रवेश द्वार पर जो है वो नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब से आए एक युवक को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे उसके उसके जो जेब से है वो 10.18 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद हुई श्रोतों। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा निवासी सराय मोहल्ला गली नंबर 47 गांधी चौक पठानकोट पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद हीरोइन के साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जो है वो कब्जे में ले लिया है श्रोतों। एएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 एवं 25 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहन जांच जारी है तथा ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं और वह मादक पदार्थ कहां से लाया था। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और अब वक्त हो गया है श्रोतों कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं आप सभी से इस अंतराल के बाद।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क कोई। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
6: ओके।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: देखो, और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: हमारे गेस्ट भी।
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

श्रोत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है श्रोतों। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फेस 4 शुरू कर दी है। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर देना और साथ ही ग्रामीण तथा दूर दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। जी बिल्कुल श्रोताओं, दूर दराज क्षेत्र के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को जो है वो मजबूत बनाना है। योजना के तहत चयनित युवाओं को यात्री बस खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर वाहन की एक्स शोरूम कीमत का 50% और डीजल बस खरीदने का 30% सब्सिडी दी जाएगी। शतों ये सब्सिडी सीधे बैंक या वित्तीय संस्था के खाते में जमा कराई जाएगी। बस में कम से कम 32 सीटें होना अनिवार्य है। शेष राशि लाभार्थियों को स्वयं या बैंक ऋण के माध्यम से जुटानी होगी। सरकार ने योजना में इलेक्ट्रिक बसों को विशेष बढ़ावा दिया है। नियमित रूप से निर्धारित रूट पर बस चलाने वाले लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बस के लिए हर महीने 75,000 रुपये और डीजल बस के लिए 50,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 वर्ष तक दी जाएगी। इसके लिए बस का सभी निर्धारित ट्रिप पूरे करने जरूरी होंगे। लाभार्थी को स्वयं हर महीने कम से कम 20 दिन बस चलानी होगी। बसों में GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा श्रोतों, ताकि संचालन की निगरानी की जा सके। योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

0: लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्यपाल ने ये बात आज लोकभवन में उनसे मिलने आए गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने एसोसिएशन के चलो हिमाचल अभियान का पोस्टर भी जारी किया। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख जलाशयों व झीलों में साहसिक पर्यटन और जल क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। कविंद्र गुप्ता ने एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। आईजीएमसी शिमला में अब रोगियों का उपचार करने के साथ साथ बीमारी के कारणों व विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के अध्ययन के प्रयास किए जा रहे हैं। आईजीएमसी की रिसर्च टीम द्वारा लाहौल स्पीति के काजा में पित्त की पथरी के मामले में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ये पथरी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है। रिसर्च टीम के प्रमुख डॉक्टर विपिन शर्मा ने बताया कि जनसंख्या के आधार पर गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए 2.5 वर्ष तक काजा में 450 लोगों पर ये अध्ययन किया गया।
1: इस पीति एरिया को हमने तीन हिस्सों में बांटा। 3500 मीटर से नीचे वाला अल्टीट्यूड तब वाला एरिया, मिड अल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेके 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर जिसका इक्विपमेंट कॉमिक वाला एरिया थी। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया, हर पेशेंट भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 में लिए तो 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किया, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाएगी।
0: वहीं अध्ययन की जानकारी देते हुए आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब बीमारियों और उनके कारणों को लेकर शोध किया जा रहा है।
2: हमने एक जनसंख्या आधारित गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया।
0: ऊना जिला का हरोली विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बन गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 60 महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों पर 195 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 2400 घंटे निगरानी रखी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेंटर आधुनिक व तकनीक आधारित स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अग्निहोत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक से लैस ये व्यवस्था अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के साथ साथ आम नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाएगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कोलकाता में आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन और ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 7 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया 3रे सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे विधायी कार्यों के साथ गैर सरकारी सदस्य बिल पर सम्मेलन में मौजूद पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की और उन्हें हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली व क्रियाकलापों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों की तर्ज पर स्तरोन्नत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में

0: रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपेक्षित व निर्धन वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अति दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपियों में जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बाद में जगत सिंह नेगी ने कल्पा ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की समावेशी नीतियों व कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया है। वे आज शिमला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित पोस्ट डिजास्टर रिव्यू सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी के कारण बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। पंत ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए जा रहे तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन की सराहना भी की। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में दोपहर बाद से वर्षा हो रही है। बीते दिनों हुई भारी वर्षा के कारण प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 49 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। उधर लाहौल स्पीति में बादल फटने से आई बाढ़ से प्रभावित जहालमा नाला में राहत व पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। प्रदेश का पहला पूर्ण सीसीटीवी निगरानी वाला क्षेत्र बना हरोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आईना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव के पंत ने आपदा तैयारियों में जन भागीदारी तकनीक व समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग की आगामी एक सप्ताह तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का और बस यही कहना चाहता हूं मैं आप सभी से कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आरजे सचिन कपूर को यूं ही सुनते रहिए और सुनाते भी रहिए और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाजत। नमस्ते धर्मशाला।

0: आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ, बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या?
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना, समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर

0: परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
1: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते, उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं, और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
2: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
3: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
4: हाँ बोलिए।
3: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
4: 10 लाख? सच्ची?
3: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
4: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों
3: सर? ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
4: ओके।
3: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
4: अच्छा
3: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
4: अच्छा, ये ले।
3: यस सर।
5: मछली तो फंस गई।
6: शिंगे
7: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
8: चलो बच्चों, खाना लग गया। पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
9: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
8: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती है सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
10: सुनो है? तुम पढ़ी लिखी हो?
11: हाँ बिल्कुल।
10: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
11: पूछो।
10: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
11: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
10: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
11: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
10: गेस कर रहा था।
11: अरे गेस भी
12: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ, बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या?
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना, समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों
6: सर? ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये ले।
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे, देखो गर्मी।
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
0: चलो बच्चों, खाना लग गया। पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
2: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
0: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती है सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
11: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
12: हाँ बिल्कुल।
11: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
12: पूछो।
11: रेडियो और अखबार में क्या फर्क?
12: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
11: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
12: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
11: बस गेस कर रहा था।
12: अरे गेस भी
13: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: दीवाने।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो फिर रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ, बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या?
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना, समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: वैसे तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये ले।
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
0: चलो बच्चों, खाना लग गया। पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
2: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
0: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती हैं सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
11: सुनो है? तुम पढ़ी लिखी हो?
12: हाँ बिल्कुल।
11: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
12: पूछो।
11: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
12: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
11: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
12: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
11: गेस कर रहा था।
12: अरे गेस भी
13: कौन है? कहाँ से आते हैं?

आप सभी ने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है। आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

हाथों में हाथ डाल, ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होंठों की प्यास है, ए दिल

तोबा ये निगाहें, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे जिसे चाहे।

हम धन को लूटे था, अरे वो मन को लूटे था, अगर माने वो गोरी था, तरे हम इसके चोरी, ऊप रहे हम दोनों की जोड़ी।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।